मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 10, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनक निवास होइ छ। स्वस्थ मनक हेतु शारीरिक स्वस्थता आवश्यक कहल गेल छैक। जँ एक कहबी के सत्य मानल जाए तखन तो मनक अपेक्षा शरीरक श्रेष्ठता स्वीकार करय पड़त। शरीर प्रधान आ मन गण भ जायत तखन तो मन के शरीरक अनुगामी मानय पड़त। क्या दृष्टियां ई धारणा जे जेहन शारीरिक स्थिति तेहने मानसिक स्थिति आब भ्रामक सिद्ध भ चुकल अछि। देखल जाय छै जे शारीरिक दृष्टियां स्वस्थ आ सबल व्यक्ति मानसिक विकार रुग्णता वा अशक्तता सँ पीड़ित होइ छथि आ शारीरिक दृष्टियां निर्बल व्यक्ति सबल स्वस्थ सुंदर मनक स्वामी होइ छथि। मानसिक स्वास्थ्य ककरा कहब? शरीर शास्त्री कहता जे जँ मस्तिष्क विभिन्न परिस्थिति में सामान्य ढंगक प्रतिक्रिया करे तो एहन मस्तिष्क वाला व्यक्ति के कहल जतै जे ओ मानसिक रूप में स्वस्थ अछि। जथा जँ मन शीत उष्णता

0: क्लेश आदिक अनुभव करै, परिस्थितिक अनुसार मन में भय, घृणा, द्वेष, दया, प्रेम आदि संवेगक स्फुरण होइक मन बाह्य जगतक प्रति सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त करै, तो ई स्वस्थ मनक परिचायक भेल। किंतु विचारणीय जे कि यह पर्याप्त अछि। हमरा बुझना स्वस्थ मनक अर्थ अछि जे मन में कोनो विकार नहीं हो, ककरो प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, छल छद्म सँ मन सर्वथा रहित हो, सभक प्रति स्नेह सद्भाव सँ भरल हो, मन में सदैव नीक उच्च विचारक उद्भव भेल करे। जँ एहि अंग्रेजी लोकोक्ति आ शरीर शास्त्री लोकनिक मत के मानल जाए, तो संसार में अहन शारीरिक दृष्टि स्वस्थ क्या गोटे भेटता है जिनका मन में सदैव सद्विचारे उत्पन्न होइत होइन, कखनो कोनो दुर्विचार नहीं उत्पन्न होइत होइन, जे कखनो ककरो अपकार नहीं करैत होइथ, सदिखन सभक उपकारे करैत होइथ। उत्तर प्रायशः नकारात्मक है। तखन तो ई सिद्ध भेल जे यद्यपि मनक निवास शरीरे में होइछ, तथापि ओकर अपन भिन्न सत्ता छैक। एहिसँ इहो सिद्ध होइछ जे मन शरीरक अनुगामी नहीं होइछ, अपितु मन ओ सत्ता थिक जे शरीर पर शासन करै छै। मने प्रधान थिक, शरीर गौण। आब तो शरीर शास्त्रियो लोकन स्वीकार करै छथि जे शारीरिक स्वास्थ्यक लेल मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षित अछि। जँ मन तनाव मुक्त, शांत, स्थिर आ प्रसन्न अछि, तो शरीरो स्वस्थ रहत, सबल रहत। जँ मन विकारग्रस्त अछि, तो शरीर निश्चित रूपें रुग्ण भऽ जायत। चिकित्सक लोकनि कहब छनि जे रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह आ कैंसर सदृश व्याधिक कारण मानसिक तनाव अछि। भारतीय तत्वदर्शी लोकनि एहि सत्य सँ परिचित छलाह। सांख्य दर्शन त्रिविध तापक मूल विकृत मनस्थिति के मानै छै। संसारक आनो आनो देश में प्राचीन कालहि सँ शारीरिक व्याधिक उपचार मानसिक उपचार द्वारा करबाक प्रथा छल। अरस्तु अपन ग्रंथ साइकोड्रामा में लिखै छथि जे दुखद स्थिति सँ त्राण पेबाक एकमात्र उपाय अछि जे मन के शुद्ध आ पवित्र बनाओल जाए। ईसा सँ 500 वर्ष पूर्व ग्रीसक एपिडोरसक मंदिर में शारीरिक व्याधि सँ ग्रस्त रोगीक मानसिक उपचार कयल जाय छलैक आ एहि सँ रोगी स्वस्थ भऽ जाय छलैक। कहबाक आशय ई जे मने प्रधान थिक आ विवेकी मनुष्य मन में सद्विचार आनी मन आ शरीर दुनू के स्वस्थ रखै छथि।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा के कार्यक्रम में गोपी चंद्र झा की वार्ता, जुलाई मास के प्रमुख कृषि कार्य।
2: श्रोता लोकन सुप्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। जुलाई मासक खरीफ फसिलक लेल सबसे महत्वपूर्ण समय होइत अछि। एहि समय मुख्य रूप से धान रोपाई का, मकई, दालि, मूंग, उड़ीद और सोयाबीनक बुआ कयल जाइत अछि। संगे संग खेत में जल निकासीक व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन और समय पर खौर पातक नियंत्रण केने प्रमुख काज होइत अछि। जुलाई मास में कयल जाय वाला जे प्रमुख कृषि काज और ध्यान राखे योग्य गप एहि प्रकारे अछि। धानक मध्यम और देर से पाके वाला किस्मक रोपाई जुलाई के पहिल सप्ताह धर पूरा कऽ लेबाक चाही। संकर किस्म और बासमती किस्मक रोपाई का काज एहि मासक अंत तक कयल जा सकैत अछि। मकई जौ और बाजरा के बौ सेहो जुलाई के पहिल पखवाड़ा धर पूरा कऽ लेबाक चाही। दलहन और तिलहन फसिल राहरि, मूंग, उड़ीद, सोयाबीन और मूंगफली के बौ के लेल ई अनुकूल समय अछि। बौ करे से पहिने बिया के उपचारित अवश्य कऽ ली। तीमन तरकारी के बौ अहाँ खेत में रामतरोई, सजमनि, करेला, तोरई के बीज बिया बौ कऽ सकै छी। नर्सरी तैयार केने सर्दी मास में उगाओल जाय वाला तीमन तरकारी जेना फूलकोबी, भाटा और मिर्चाई के लेल नर्सरी में बिया बौ करे के उचित समय अछि। प्रमुख कृषि कार्य

0: एवं प्रबंधन। खौर पातक नियंत्रण, भारी वर्षा के कारण खेत में खौर पात तेजी से उगते कमौनी कऽ खेती के साफ राखी। जल निकासी, भारी वर्षा वाला क्षेत्र में खेत में जल भराव के रोकबाक हेतु उचित जल निकासी के नाला बनाबू। माटि चढ़ेने कुसियारक फसिल में एहि मास माटि चढ़ेबाक काज पूरा कऽ ली ताकि गाछ गिराए नहि। उर्वरक एवं कीट प्रबंधन, फसिलक उचित वृद्धि के लेल यूरिया के टॉप ड्रेसिंग करी। फसिल के कीट और रोग से बचेबाक हेतु कृषि विशेषज्ञक सलाह से उचित कीटनाशक छिड़काव करी। तीमन तरकारी के खेती करे वाला किसान के जुलाई मास में भाटा, मिर्चाई, अगता, फूलकोबी के रोपाय समय से करी। एहि मास में खेत से जल निकासी के लिए नाला बना ली। जुलाई मास खरीफ फसलक लेल सबसे महत्वपूर्ण मास होइत अछि। खरीफ फसिल में कैटा अहाँ के मुख्य तीमन तरकारी के खेती होइत अछि। खेती तीमन तरकारी के खेती करे वाला किसान के जुलाई मास के रहित रहित खेती के एहि चरण के निपटा लेबाक चाही। भाटा, मिर्चाई, अगता, फूलकोबी के रोपाई के उचित समय अछि। जुलाई मास खार अश्रावण सेहो आबैत अछि। तपैत धरती के ठंडा करे के लेल मानसून वर्षा लऽ कऽ आबैया और मौसम सुहावना बनि जाइत अछि। एहि मास में मुख्य कृषि संबंधी जो मुख्य गप अछि ओ ई अछि, तीन टा जरूरी बात अछि। जल निकासी के लेल सफल खरीफ फसलक आधार पर अचानक भारी वर्षा होय के संभावना बनल रहैया और नुकसान से बचेबा के लेल मकई, कुसियार, कपास, बाजरा आ आन फसिल में पटौनी के लेल बनाओल गेल नाला के जल निकासी के काज में लगा सकै छी। खेत में जल जमा भेला से फसिल के भारी नुकसान पहुँच सकैया तो फालतू जल के गाम के तालाब में दऽ दी आ जरूरत पड़ला पर पटौनी के काज में आनी। जल प्रबंधन बेसी पैदावार का आधार। धान में रोपाई के बाद प्रत्येक सप्ताह वहाँ के पुरान जल खेत से निकाल कर आ ताज़ा जल भरी। प्रत्येक हफ्ता में जे कि अहाँ के 2 इंच से बेसी गहिर नहीं हुए, जो कम जल उपलब्ध है तो हलुक पटौनी कऽ कर खेत का मात्र गीला रखी। नेत्रजनक प्रबंध, पोषक तत्व का बचाव। जुलाई मास में नेत्रजन खाद देते समय वर्षा का विशेष ध्यान रखी। जमीन में बेसी नमी होबाक चाहिए ताकि यूरिया पूरी तरह घुल जाए। परंच बेसी नमी या तुरंत वर्षा भेला के स्थिति में यूरिया तखन तक नहीं दी जखन तक कि मौसम और जमीन में नमी उचित मात्रा में नहीं रह जाते, अन्यथा बहुत रास जे नेत्रजन या वो जल के संग बह जाइए। क्षेत्र का अनुरूप करी खेती बाड़ी। अब मैदानी क्षेत्र में फसल में धान के रोपाई एहि माह समाप्त कर ली। रोपाई के लिए 20 से 30 दिन पुरान पौध प्रयोग करी।
1: अभी आप कृषि चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था जुलाई मास के प्रमुख कृषि कार्य। वार्ताकार थे गोपी चंद्र झा। आकाशवाणी का यह दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।

0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर जीवेश रंजन की भेंट वार्ता, दांतों में छेद कारण और निदान।
2: दांत में छेद या दांतों का क्षरण दांतों के उस हिस्से को कहते हैं जो दांतों के प्लाक में कीटाणुओं द्वारा तैयार एसिड से नष्ट हो जाता है। प्लाक एक ऐसी चिपचिपी परत को कहते हैं जो म्यूकस, लार, अन्नकण और कीटाणुओं से बनी होती है। दांतों की क्षरण या छेद एक बहुत ही आम बीमारी है। खासकर जानकारी के अभाव और अशिक्षा की वजह से लोग इस रोग से अपेक्षाकृत अधिक पीड़ित होते हैं। दांत में छेद या क्षरण का असली कारण है प्लाक। प्लाक के भीतर मौजूद कीटाणु मुख्य रूप से शक्कर और भोजन में मौजूद स्टार्च पर ही पनपते हैं और बढ़ते हैं। ये कीटाणु एसिड तैयार करते हैं जो धीरे धीरे दांतों का इनामिल नष्ट करके दांतों में छेद या कैविटी तैयार कर देता है। दांतों की चबाने वाली बाहरी सख्त चमकदार परत को इनामिल कहते हैं। एक बार इनामिल नष्ट होने के बाद एसिड दांतों की नरम भीतरी सतह पर हमला करता है। इससे दांतों में दर्द भी होता है

छेद भी बड़ा होता जाता है। इसके बाद कीटाणु दांतों के बीच में मौजूद पल्प के खुले हिस्से को अपना शिकार बनाते हैं और स्नायु को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण दांत निकलवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके लक्षणों में अक्सर शुरुआत में दांतों की सड़न से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन एक बार इस सड़न के कारण दांतों के सख्त और बाहरी हिस्से का ज़्यादा भाग नष्ट होने के बाद कोई भी गर्म, ठंडा या मीठा पदार्थ खाते समय दांतों में तेज दर्द होने लगता है। दर्द के अलावा सांस में बदबू आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके निदान के मुख्य दो हिस्से हैं, पहला दांतों को सड़न से बचाने के उपाय और दूसरा सड़े हुए दांतों का उपचार। सड़न से बचने के उपायों में प्रमुख हैं दांतों की जीवन के शुरुआती दिनों से ही सही देखभाल, जिसमें अभिभावक एवं शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका

0: के निदान के मुख्य दो हिस्से हैं, पहला दांतों को सड़न से बचाने के उपाय और दूसरा सड़े हुए दांतों का उपचार। सड़न से बचने के उपायों में प्रमुख हैं दांतों की जीवन के शुरुआती दिनों से ही सही देखभाल, जिसमें अभिभावक एवं शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और बच्चों को नियमित ब्रश करने, अधिक टॉफी, मिठाई या दांतों पर चिपकने वाले पदार्थ से बचने के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हर 6 महीने पे दांतों का डेंटिस्ट से जांच अधिक आवश्यक है। सड़े हुए दांतों के उपचार के लिए अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और छेद का फिलिंग करा लें। अगर सड़न से दांत का स्नायु नष्ट हो गया हो तो रूट केनाल द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, और ऐसे दांत इलाज के बाद वर्षों आपका साथ निभा सकते हैं।
1: दांतों में छेद, कारण और निदान। अभी आप डॉक्टर जीवेशकु रंजन की ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए पहले सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश वंदना।

अभी आप संवेद स्वर में देश वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वर में ये गणपति वंदना।

हरिहरन के गाए इस शिव भजन के बाद आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये राम भजन।

अभी आप लता मंगेशकर के स्वर में ये राम भजन सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन।

ये स्वर था जगजीत सिंह का। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये भजन।

अनुपमा देशपांडे के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी उषा मंगेशकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 12:00। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुनिएगा दिन के 12:30 पर। और दिन के 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन के 1:15 पर।

दोपहर 2:30 पर आप सुनते हैं रोजगार समाचार। पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम संध्या 5:00। संध्या 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। और संध्या 7:00 आप सुनते हैं किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। चर्चा का विषय है दिल्ली केंद्र से रिले, ये कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग।

0: अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का यह दरभंगा केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंतम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एकदिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,675,000,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25,000,000,000 दिनानां वर्धिता अयं वृत्ति

0: अत्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति, अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टं अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्यां अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतं एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अन्तर्गतं उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणम् एव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने

0: है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला अंक में हम रंजीत और हमारे संगे स्टूडियो में उपस्थित छथि प्रतिभा, अहुके हमर नमस्कार।
2: नमस्कार रंजीत जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार।
1: और जना के श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रम के शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
2: आज सुविचार है सुभाषितानी है, कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षनाय। अर्थात दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन इसी को ज्ञान दान और दूसरों के रक्षा के लिए उपयोग करते हैं।
1: निश्चित तौर पर देखियो जे एक संदर्भ में अगर ये प्रसंग के हम लोग छेड़े छी प्रतिभा, तो बहुत रास बात सामने निकल के आबै छै। तैं लोग कहल जाय छै जे कखनो शक्ति के दुरुपयोग नहीं करबाक चाहिए, धन के दुरुपयोग नहीं करबाक चाहिए। अगर समय अपना पक्ष में रहे तो स्थिरता और गंभीरता के संग रही, और अगर समय अपना पक्ष में नहीं रहे तो धैर्य और संयम के साथ रही। और नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में एक दिग हम लोग और आगा बढ़ाबै छी और एक नज़र राखै छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन के मायने राखैत हमरा राष्ट्र में हमरा समाज में।

0: जानकारी साझा कर रहल छथि प्रतिभा प्रीति।
1: आज के दिन यानी 1 जुलाई 1862 को एशिया के सबसे पुराने न्यायालयों में से एक कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST लागू हुआ था। इसे 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था एक देश एक कर की व्यवस्था स्थापित करना। भारत रत्न से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इनके जयंती पर हर वर्ष 1 जुलाई को यानी आज के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म आज ही के दिन 1927 को हुआ था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। 1 जुलाई 1963 की बात करें तो जी सतीश रेड्डी का जन्म हुआ। ये एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2018 से 2022 तक रक्षा अनुसंधान

0: कर की व्यवस्था स्थापित करना। भारत रत्न से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इनके जयंती पर हर वर्ष 1 जुलाई को यानी आज के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म आज ही के दिन 1927 को हुआ था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। 1 जुलाई 1963 की बात करें तो जी सतीश रेड्डी का जन्म हुआ। ये एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2018 से 2022 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के 13वें अध्यक्ष के रूप में काम किया। इन्होंने देशी डिजाइन विकास विविध मिसाइलों और सामरिक प्रणालियों तथा निर्देशित हथियारों की तैनाती में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस्ताद राशिद खान, इनका जन्म 1 जुलाई 1966 को हुआ था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार थे। वे रामपुर सहस्वास घराने से हैं। तो ये था आज के दिन का इतिहास। क्यों है आज का दिन इतिहास के आईने में खास?
1: और जना के प्रति के बुझल छन कि हमारे लोग कुछ बातचीत करे छी तो पहले अपने कहलो है जे आई हमारे लोग चिकित्सक दिवस मनाबरी छी और ओहो किनको व्यक्ति के निधन के उपरांत एकर शुरुआत कैल गेल
0: जन्मदिवस के अवसर पर।
1: जन्मदिवस के अवसर पर
0: भारत रत्न से सम्मानित थे चिकित्सक विधान चंद्र राय, इनके जयंती पर इस दिन की शुरुआत की गई कि आज के दिन यानी 1 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाए। हाँ
1: जी, नेशनल डॉक्टर्स डे
0: जी।
1: कतौ न कतौ डॉक्टर्स के डॉक्टर लोकन के चिकित्सक लोकन के भगवान के दर्जा देल गेल छन।
0: निश्चित तौर पे
1: दूसर भगवान हुनका कहल जाय छन। और देखियो वाकई में एक जे कोनो चिकित्सक होइ छथि हुनका लग जखन कोनो बीमार व्यक्ति मरीज पहुँचै छथिन तो हर यथासंभव प्रयास करै छथिन जे हुनकर जे बीमारी छन हुनका अविलम्ब तुरंत केना दूर कैल जा सके, तकरा लेल ओ अथक प्रयास करै छथि। और तमाम और आई के डेट में तो मेडिकल के जगत में प्रतिभा बहुत सारा संसाधन भ गेलै, लेकिन जाहि समय में विधान चंद्र राय रहथिन डॉक्टर चिकित्सक रहथिन ओहि समय में अतेक वैज्ञानिक संसाधन के उपलब्धता नहीं छलिए, तकरा बावजूदो ओ चिकित्सक छला है और प्रत्येक बीमारी के प्रति जनसाधारण के प्रति हुनकर जे सोच छलनि हैं सकारात्मक सोच के संगो मरीज के इलाज करै छला है।
0: देखिए आपने कहा कि भगवान के रूप होते हैं चिकित्सक, तो सही है, भगवान हर जगह ईश्वर हर जगह पहुंच नहीं सकते तो वो अपने प्रतिरूप को स्थापित करते हैं। आप देखते होंगे बहुत ही खतरनाक बीमारियों से जूझते हुए व्यक्ति या परेशान व्यक्ति चिकित्सक के पास जाते हैं और वो वहाँ से स्वस्थ होकर के वापस आते हैं, तो ये तो ईश्वर का साक्षात वरदान ही हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य के लिए ऐसा विधान है। तो देखिए सेवा संवेदना और स्वास्थ्य का मानवीय जो चेहरा है, आपने कहा कि डॉक्टर्स के रूप जो होते हैं प्रारूप उनके जो होते हैं, तो ये इन विषय पे हम सभी बातचीत करेंगे कि सेवा संवेदना और स्वास्थ्य का मानवीय चेहरा साथ में।
1: हाँ निश्चित तौर पर सेवा संवेदना और की कहते मानवीय चेहरा
0: वही मानवीय चेहरा
1: में हाँ वही मानवीय चेहरा में जो अमानवीय चेहरा नुकायल छे तकरो लेल हमरा लोकन जिक्र करब। हाँ हमरा बाजे में कोनो कोताही नहीं है। आइ काल्हि के आजुक परिवेश में जे मेडिकल पद्धति एकटा कतौ न कतौ व्यापारिक क्षेत्र बनकर रह गेलै ओहू पर हमरा लोकन जिक्र करब चर्चा करब जे आइ के डेट में अहाँ अस्पताले के देख लो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो आए दिन अखबार में रेडियो दूरदर्शन आदि के माध्यम से जो हमरा लोकन के समाचार प्राप्त होइए ओ कतौ न कतौ बड़ा दुखद स्थिति है। हम अगर कोनो पहलू के सकारात्मक के पहलू के चर्चा करिए नकारात्मक पहलू के चर्चा नहीं करिए तो कतौ न कतौ बेईमानी होइ छै। गुण और दोष दुनू के मिश्रण के चर्चा होबाक चाही,
0: देखने होते हैं बिल्कुल।
1: ओहि दुनू के चर्चा हमरा अखन करब जे पहुलका जे डॉक्टर हमर छला है जै समय विधान चंद्र राय होइ छला है और अखन जे हमर डॉक्टर्स के छथि तै में की अंतर छै। चिकित्सा पद्धति जे छै से तऽ वएह रहि गेल छै लेकिन चिकित्सा में कोना कऽ व्यापारीकरण कयल गेलै चिकित्सा के तहू पर हमारे कन चर्चा करब। मुदा ताई से पहले हमारे कन पहले सुने छी मैथिली गीत, ओकरा बाद फिर चर्चा हमारे कन करब।

0: अभी हम लोगों ने मैथिली गीत सुना, कलाकार को धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं रंजीत कुमार झा। आइए सुनते हैं रंजीत से हालचाल।
1: धन्यवाद प्रतिभा, नमस्कार।

राज्य के 23 गो जिला में सूखा के खतरा मंडरा रहल है। जून महीना में अखन तक जिला के सामान्य से 50% तक के कम बारिश भेल है। खरीफ मौसम 2026-27 में बिहार के लिए 36 लाख हेक्टेयर के धान के रोपनी के लक्ष्य निर्धारित कैल गया छल। तेकरा अलावा 3,77,000 हेक्टेयर में बिचड़ा तैयार कैल गया छल। लेकिन आद्रा नक्षत्र के 8 दिन बीत जेबा के बादो चिड़चिड़ा और नहीं गिरबा के बादो धान के रफ्तार खेती से नहीं पकड़ रहा है। लक्ष्य के तुलना में 30 जून तक 60% के बिचड़ा गिराएल गया छल। सूबे के सब सरकारी विद्यालय बुधवार से सुबह भोर के 9:30 बजे से संध्या वेला के 4 बजे तक संचालित है। गर्मी छुट्टी के बाद 22 जून को सरकारी विद्यालय के खोलबा के भीषण गर्मी के देखते सरकार ने ग्रीष्मकालिक समय सारणी में जारी कैने छल। एहिमे विद्यालय के संचालन भोरे 6:30 बजे से लौकर दुपहरिया के 12:30 बजे तक निर्धारित कैल गेल छल। आब ई अवधि समाप्त भ गेला के बाद राज्य भर में सरकारी विद्यालय 1 जुलाई से नियमित समय के अनुसार संचालित कैल जाय। सरकारी विद्यालय के में ग्रीष्मकालीन समय सारणी 30 जून को समाप्त भ गेल छल। आब विश्वविद्यालय कॉलेज में नामांकन के संगे संगे पढ़ाई और परीक्षा तय समय पर होवे के संगे संगे परिणाम सेहो निर्धारित समय पर निकालल जाय। सूबे के विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से नवका शैक्षणिक सत्र के आरंभ भ जाय। एकरा संगे राज्यपाल से कुलाधिपति सैयद अत्ता हसनैन के द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर सेहो लागू कऽ देल गेल है। हालांकि मेगा सूची के निर्धारण और नामांकन में विलम्ब के कारण किछु विश्वविद्यालय के अगला 203 दिन में प्रारंभ कऽ जायत। एहि विश्वविद्यालय के 30 जून को निर्धारित अवधि में नामांकन के प्रक्रिया पूरा नहीं भ पायल छल। लोक भवन में अपरिहार्य परिस्थिति के निर्धारित शेड्यूल में से 1 सप्ताह के छूट प्रदान कैल गेल छल। पिछला दिन लोक भवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि के एक रूपता लाव के उद्देश्य से सब कुलपति के यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जारी कर देल गेल जकरा 1 जुलाई से मानल जाए।

पहली जुलाई सं बुधवार सं राज्य के 15 लाख सरकारी कर्मी के छुट्टी के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार कयल जायत। सामान्य प्रशासन विभाग के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HMRS पोर्टल के छुट्टी के लेल आवेदन के अनिवार्य बताओल गेल है। एहि नवका प्रयास के तहत राज्य सरकार के सेवा में कार्यरत सब पदाधिकारी और कर्मी के छुट्टी के लेल आवेदन आब पोर्टल के माध्यम सँ देनाई है। राज्य कर्मी के लेल लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सर्विस और सर्विस वेरिफिकेशन मॉड्यूल के 100% इस्तेमाल सेहो सुनिश्चित कयल जाय। चिप के बढ़त मांग के चलते देश में कतेको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अपन अपन उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी कैलक है। एहन में मोबाइल फोन लैपटॉप टीवी एसी फ्रिज के कीमत पहले से बेसी चुकाब पड़त। एक सबसे पैघ कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए इस्तेमाल में होबे वाला मेमोरी चिप्स के बढ़त मांग। आयन में लागत के इजाफा और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोरी देखते ही मानल जा रहा है कि एकर आंशिक असर आम जिंदगी में सेहो पड़ सकैत अछि। शहर में रविवार के देर रात तक रुक रुक कर और कतो कतो हल्का बारिश से दरभंगा नगर निगम के सारा दावा के पोल खोल कर राख दिलक है। मानसून के पहली बारिश में लोग के गर्मी से तो राहत भेटल मगर नगर निगम परिसर सहित DMCH परिसर जलमग्न भ गेल और लगभग लगभग नगर निगम के 48 वार्ड में कोनो वार्ड पानि से वंचित नहीं रह गया। प्रत्येक वार्ड में पानि लागल है और DMCH की स्थिति ओहू से बदतर है। स्पेशल OPD तक में बारिश के पानि घुस गया और आम जनता के संगे संगे मरीज के सेहो परेशानी भ रहल छन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि सरकार बाढ़ और सूखा दोनों परिस्थिति में निपटवा के लिए पूरा तरीका से तैयार है। संवेदनशील तटबंध के पूरा तरीका से सुरक्षित कर लेल गेल है। प्रभावित क्षेत्र के पर्याप्त राहत सामग्री और उपलब्धता सुनिश्चित कयल गेल है। दोसर और सूखा की स्थिति में किसान के लेल सिंचाई के पानी के व्यवस्था के लकर सरकार सेहो गंभीरता से लेलक है और एहि दिशा में गंगा गंडक कोसी और सब के अतिरिक्त पानी के लिफ्ट कर जलाशय तक संचित करवा के लिए सरकार नयका नियम बना रहल अछि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत बिहार में 5688 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनत। एकरा में सबसे बेसी 500

11 किलोमीटर ग्रामीण सड़क के लेल किशनगंज जिला के चिन्हित कयल गेल है। ग्रामीण कार्य विभाग सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर कई देलक। राज्य भर में 733 ग्रामीण सड़क के निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति दे देल गेल है, जेकर लंबाई 6162 किलोमीटर है, जहि में 656 परियोजना के निर्माण कार्य पूरा करित 5688 किलोमीटर के निर्माण भेल है और शेष सड़क जल्दी बनत। राज्य में पहिल बेर 44 गो गन्ना नर्सरी खोलल जाए। एक नर्सरी में लगभग 5 लाख यानी कुल 2.20 करोड़ 29 प्रजाति के पौधा तैयार कयल जाए। नर्सरी में तैयार पौधा किसान के बीच वितरित कयल जाए और एक गन्ना के उत्पाद बढ़ावों के संगे रोजगार के अवसर सेहो बढ़त। बिहार में 2.21 लाख हेक्टेयर गन्ना के खेती होइत अछि। आब 25 गो नवका चीनी मिल खोलबा के कवायद सेहो तेज कऽ देल गेल है, ताहि लऽ कऽ गन्ना के खेती के विस्तार सरकार के द्वारा कयल जा रहल अछि। एकरा तहत एकल कली पौधा आधारित नर्सरी निज जन भागीदारी APPP मोड में खोलल जाए। एकरा संगे गन्ना उद्योग विभाग आवेदन आमंत्रित कलक है। किसान, किसान उत्पादक संगठन, जीविका समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिल, गुड़ उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कऽ सकैत छथि। खरीफ फसल 2024 के फसल क्षति के मुआवजा किसान के जल्दी सरकार के द्वारा देल जाएत। किसान आवेदन के जांच पूरा भ गेल है। 1,45,000 किसान के फसल सहायता योजना के तहत 139 करोड़ रुपया के राशि वितरित कयल जाएत। सहकारिता विभाग के पास फसल सहायता योजना मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। संभावना है कि अगला महीना किसान के खाता में DBT के माध्यम से फसल सहायता राशि देल जाएत। खरीफ 2024 में 9,59,000 किसान आवेदन केने छला है, जाहि में 38 जिला के 2,70,000 से बेसी किसान के अ योजना के लाभ देल जेतन। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस के मौका पर बिहार राज्य के 30,000 योग्य परिवार के बास भूमि के बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देल जेतन। एकरा लेल 31 जुलाई तक सब बंदोबस्ती प्रमाण पत्र तैयार कर के हस्ताक्षर के प्रक्रिया पूरा कर लेबाक लेल कहल गेल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह बतौलन कि अ बाबत सब जिलाधिकारी के विस्तृत निर्देश पठा देल गेल है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जुसवाल कहलन कि सब जिला के लाभुक के सूची के पुनरीक्षण कर अंतिम रूप देवा के लेल और नवका पात्र परिवार के अभियान बसेरा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करवा के लेल 31 जुलाई तक तिथि निर्धारित कयल गेल है। ई हाल चाल अखन अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छी। मनीगाछी के रेफरल अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के मंगलवार को बैसार रोगी के सेवा के अनिवार्य और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराबे पर कैल गेल। प्रभारी डॉक्टर विभा झा के अध्यक्षता में भेल बैसार में चनौर के मुखिया समिति के सदस्य मदन कुमार, सदस्य अंजनी कुमार मुन्ना सहित अन्य सदस्य सेहो उपस्थित छला है। विकसित भारत श्रीराम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार एवं विकास के संबंधित कानून, एकरा उद्देश्य ग्रामीण परिवार के 125 दिन के रोजगार उपलब्ध करेनाय अछि। ई बात मनरेगा के PO विनोद कुमार बतौलन है। मंगलवार का बहादुरपुर प्रखंड ध्रुवी राज के अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि भवन में आयोजित प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संबोधित कला PO अ अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दिलन और कहलन कि केवल रोजगार देवा के लिए योजना नहीं बल्कि जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संरचना, जलवायु अनुकूल विकास और तकनीकी आधारित सुशासन के व्यापक मिशन अमे शामिल कैल गेल है। दरभंगा ग्रामीण के विधायक राजेश कुमार उर्फ सो मंडल सदर प्रखंड के मुड़िया के वार्ड नंबर 3 में लक्ष्मण सहनी के डूब जवा के कारण मौत के बाद हुनका 4.25 लाख के चेक पीड़ित के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सौंप दिल गेल है। मनीगाछी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सेंटर डायरेक्ट कवच परियोजना और सेफ्टी संयुक्त तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बैसार प्रमुख पवन कुमार यादव के अध्यक्षता में भेल। बैसार में बाल हितैषी मुद्दा पर चर्चा कयल गेल और बाल मजदूरी के कोना जल्द से जल्द रोकल जाए अ पर विस्तृत से चर्चा कयल गेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में मंगलवार का कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के अध्यक्षता में वर्ष 2026-27 के विश्वविद्यालय पंचांग के विमोचन कयल गेल। अ मौका पर कतेको विद्वान उपस्थित छला है। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित अ पंचांग के विमोचन के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर पांडे कहलन कि पंचांग सिर्फ मुहूर्त और शुभ दिन देखबा के लेल नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के स्मृतियों के पहचान से हो अतः के विद्वान विशेषज्ञ कठिन मेहनत कर एक

0: तैयार करे छथि। सब विद्वान विशेषज्ञ धन्यवाद के पात्र छथि। शोध और प्रकाशन प्रभारी प्रोफेसर दिलीप कुमार झा कहलन कि विश्वविद्यालय पंचान के जनक पूर्व के कुलपति स्वर्गीय प्रोफेसर रामकरण शर्मा छथि, जे कि 77-78 में विश्वविद्यालय पंचांग के प्रकाशन के शुरुआत केने छला है। तरौनी स्थित बाबा नागा अर्जुन पुस्तकालय पर जनकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागा अर्जुन के 116वां जयंती समारोह कला एवं संस्कृति विभाग के ओर सँ मनाओल गेल। विधायक सह विधानसभा सचेतक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी बाबा के प्रतिमा पर माल्यार्पण और नमन कऽ कऽ जयंती कार्यक्रम के आगाज कयलनि। एहि मौका पर कतेको लोक उपस्थित छलाह। सब गोटे बाबा नागा अर्जुन के कृतित्व और व्यक्तित्व के पर चर्चा कयलनि और अपना जीवन में हुनक नीति के अपनाब के घोषणा कयलनि। एहि के संग आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: और हालचाल के बाद साझा करते हैं जानकारी मौसम की। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 1 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में गरज चमक वज्रपात तथा तेज हवा चलने की संभावना है। विशेष रूप से 1 से 3 जून के दौरान जो अधिकांश क्षेत्र में मध्यम वर्षा हुई थी वो एक दो स्थान पर और भी जारी रहने की संभावना है और भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। वर्षा की इस गतिविधि को के इसके कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है। अधिकांश जिलों में अधिकांशतः जो तापमान होंगे वो होंगे 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जबकि बेगूसराय के जिले में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत होगा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है।
0: जो हमारे बात करी यातायात संबंधी के जानकारी के बारे में, तो सुधारक बताबत चली जाए यातायात संबंधी के जानकारी के बारे में जतिक सूचना हमारे कार्यालय तक पहुँचल तो बताबत चली जे शहर मार्ग में सड़क मार्ग में जो वन वे सिस्टम लागू है वन वे सिस्टम आइयो लागू रहत और उसमें कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गए। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण उसमें फेरबदल कैल जाए तेकर जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से जरूर देल जाए। जो बात करी रेलवे सफर के, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा कोनो गाड़ी के जे परिचालन के समय निर्धारित है बोर्ड के द्वारा उसमें कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गए। हालांकि मौसम भोर में उतेक साफ तो नहीं लेकिन साफ छल, तकर मौसमों के असर रेलवे पर बुझाए पड़े नजर नहीं आबि रहल अछि। जो बात करी हवाई सफर के, तो हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से जाहि विमान के जे उड़ान भरबा के समय निर्धारित है और जाहि विमान के जे लैंड करबा के समय निर्धारित है वो अपना समय पर उतरत और समय पर उड़ान भरत, उसमें हवाई अड्डा अथॉरिटी की तरफ से कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गए। अगर मौसम खराब हो या अगर कोनो ओहि तरहक बात होइ छै तो अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा के तरफ से सूचना देल जाएत। लेकिन संगे एकटा बात और कह जे जो आइ कोनो श्रोता लोगन के तीनू सफर के माध्यम से कोनो सफर करबा के योजना होइन तो ओहिठमन का जो इंक्वायरी नंबर देल गेल छै ओहि नंबर पर एक बेर क्वेरी करी, ओकरा बाद अपने अपन सफर के शुरुआत करी। और प्रतिभा नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के सफर के शुरुआत हमारा लोकन कऽ लेने छी और लगभग लगभग मध्य भाग में हमारा लोकन पहुँच गेल छी, तो सबसे पहले श्रोता लोकन से हम एकटा फिल्म संगीत के आनंद लै छी, ओकरा बाद फिर हमारा लोकन अपना कार्यक्रम में वापस आए
1: क्योंकि सूचना बहुत तरह से दे चुके हैं, मौसम की जानकारी दे चुके हैं, हालचाल के माध्यम से अपने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सुना चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं मनोरंजन की तरफ।

0: संगीत। आशा करते हैं कि सबको पसंद आई होगी। और आज बुधवार है तो बुधवार को हम सभी लेके आते हैं मिथिला की आवाज़। तो आइए सुनते हैं मिथिला की आवाज़।
1: श्रोताओं के नमस्कार। आजुक मिथिला के आवाज के अंक में हमरा संग जुड़ रहल छथि शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर चिकित्सक अरविंद कुमार झा। अब हमारा हिनका से जानबाक प्रयास कर रहा

0: जे ई वारिस और उमस भरल गर्मी में नवजात जे छोट छोट धिया पुता छे तकर देखभाल हमरा लोकन कोना कर सके छे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आकाशवाणी दरभंगा परिवार में अपने के स्वागत है। अपने हमरा श्रोता के बतबियन जे एहि मौसम में छोट छोट जे धिया पुता छे तकर देखभाल कोना कयल जा सके छे।
1: सबसे पहले अपने के प्रणाम, अपने स्व और बहुत बहुत धन्यवाद। जते श्रोता लोकन छथिन सबके प्रणाम। एहि मौसम में नवजात बच्चा के देखभाल करनाई बहुत इजी छे, कोनो बहुत टफ नहीं छे। और हर माँ जे छथिन से एक टा अपने में डॉक्टर छथिन, तो वो या दादी माँ छथिन वो डॉक्टरों के माँ छथिन, तो वही तरह सा कैल जा सके। सिंपल दू चारिटा छोट छोट चीज हम अपने लोकन के बताबा चाहे छी, जे अपने लोकन अगर ध्यान रखबे तो हमर भविष्य के बहुत उज्ज्वल रहत। जे बच्चे ल सब हमर सबके भविष्य। नवजात बच्चा के अगर माँ के दूध देल जाए तो वैसे निक किछ नहीं छे। जेना गर्मी बढ़ रहल छे, आई गर्मी में माँओ अगर कनिक हाइड्रेटेड रहथिन, कनिक बेसी पानी पीथिन दूध पियाबे से पहले 15 मिनट पहले अगर 1-1.5 गिलास का पानी पी लेथिन तो वो बहुत उपयुक्त मानल जेते, बच्चा में कनिक पानी बेसी देल जेते। दोसर चीज कपड़ा, एकरा चरणबद्ध तरीके से हम सब समझे छी। अपने सबके मल्टीपल लेयर्ड में, मतलब एक लेयर में बेर बेर लेयर में सूती कपड़ा पहिराबे के अछि। सूती कपड़ा या कोनो कपड़ा बच्चा के टाइट नहीं होबक चाहिए, से एकटा ध्यान रखबक चाहिए। रेगुलर कपड़ा चेंज होबक चाहिए, एकटा ई चीज भेलै। दोसर चीज टेम्परेचर, जनरली एकटा हम देख रहल छी कि सब कहै छथिन गर्मियों में बच्चा के गर्म राखक छै, नहीं एहन नहीं छै। एकटा उचित टेम्परेचर 25-28 डिग्री में अहाँ एसीओ चला सकै छी, अहाँ पंखा चला सकै छी। पंखा के डायरेक्ट हवा में नहीं राखियौन, कनिक साइड में राखियौन। ई सब चीज छोट छोट चीज के अपने ध्यान राखियौन। समुचित स्तनपान करायल जाए और सूती कपड़ा में राखल जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन कैल जाए। जनरली कंबल से ढक दै छी, से सब नहीं कैल जाए। दोसर, रेगुलरली एक दिन छोड़ कर या दू दिन छोड़ कर हाँ स्पॉन्ज बाथ कह सकै छियनि, ओना तो रोज कह सकै छियनि, लेकिन आइ काल्हि के नया टर्म में कहल जा रहल छै कि एक दिन छोड़ कर नवजात बच्चा के कपड़ा भिजा कर अगर पोछि देबै तो वो बेसी उपयुक्त मानल जाइ छै। एक दूटा चीज और, सरसों तेल और काजल नहीं लगाएल जाए तो उपयुक्त हेतै। अइ में हमरो माने माने छथिन तो बाकी के तो हम नहीं कहब, लेकिन जे साइंटिफिक ई आबि रहल छै तै में ई दुनू के मना कयल जा रहल छै। और कोनो बहुत विशेष नहीं छै, रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर राखियो, टाइमली दूध पियाल जाओ। माँ जे छथिन से पानि कनिक बेसी पीथिन और मल्टीपल लेयर में सूती कपड़ा पहिराएल जाए, इएह 3-4 छै। और कोनो विशेष एहिमे नहि छै, जेना पहिले से राखल गेलै हमरा अहाँके पालल गेलै तऽ नहि हुनको सबके पालल जाए।
0: अमूमन एकटा अखन देखल जाइ छै जे बच्चा के अगर मानि लिअ कनिको खाँसी सर्दी बुखार टाइप अगर लक्षणो अबै छै तऽ परिवार के जे अभिभावक छथिन वो थोड़े चिंतित हो जाए छथिन एहनो मौसम में, तऽ आखिर ओहि समय में कोना अपना आपके संभालल जाए।
1: सबसे पैघ चीज की छै, कनिक मनिक सर्दी कनिक खाँसी ई एकटा प्रोटेक्टिव चीज छै। जेना हमरा अपना अहाँके गला में किछु फँसैए तऽ अपने सब खखासै छियै कि एना किछु केलहुँ और ओकरा साफ केलहुँ, तेनाही भगवान की केलखिन हँ कि छोट बच्चा के हल्का सा छींक और हल्का सा खांसी देलखिन हँ कि कनिक गला में किछु फँसलै तो छींक के माध्यम से या खांसी के माध्यम से निकल जाए। हाँ, अगर बढ़ऽ लगे तो नजदीक के डॉक्टर के संपर्क करी। टेम्परेचर से रिलेटेड कहलिए कि बच्चा के 99.5 तक नॉर्मल टेम्परेचर मानल जाए छे, तो इलेल बहुत घबराए के आवश्यकता नहीं छे। कखनो कखनो हम सब अगर बेसी कपड़ा पहिरा दे छी या कंबल ओढ़ा दे छी या पंखा बंद कर दे छी तो इहो के वजह से टेम्परेचर बढ़े छे। लगातार 3 दिन अगर टेम्परेचर बढ़ल छे तो अहाँ अपन नजदीक के डॉक्टर के संपर्क करू, या बहुत हाई ग्रेड फीवर आबि रहल है 103, 104, 105 तहन कहू। 99 से 100 के बीच में अगर रहैए तो बहुत घबराए के नहीं छे। जेना अपने के कहलूँ कि स्पॉन्जिंग नॉर्मल कपड़ा के पानी से भिजा कर अपने पोछ दे देबे तो इहो से ठीक रहते। और वायरल फीवर एखन बहुत चलन में छे, एक दू दिन अगर माइल्ड फीवर रहा तो तैसे बहुत घबराए के नहीं छे। प्रचुर मात्रा में पानी दियो, पानी बचा के तो डायरेक्टली नहीं दो सके छे तो दूध पियाबियो ठीक छे, और माँ दूध पियाबे से पहले कनिक पानी पी लेथिन, इएह सब छे। छोट मोट चीज के नॉर्मली घर पर ठीक कयल जा सके छे। खांसी सर्दी के दवाई तुरंत अवॉइड करके छे, लेटर स्टेज में देखथिन डॉक्टर जोकरा।

0: जज करथिन कि देवे के छे कि नहीं देवे के छे तोहन देवे
1: के छे। एकटा बात और डॉक्टर साहब अपने बताओ जो अपने हमरा श्रोता के जे विटामिन डी के स्रोत सूर्य के रोशनी के मानल गेल
0: जी जी जी,
1: लेकिन अमूमन हमरा लोग की देखे छे ते घर में ठंडी में तो बच्चा के लोग सूर्य के रोशनी में राखी छथि
0: जी,
1: लेकिन गर्मी में तापमान में वृद्धि होवा के कारण बच्चा के लोग जो बेसी हमरा बच्चा के रौद लग जाए तो गर्मी लग जाए जाते रौद में हम कोना देबे अइ में की अंतर छे।
0: दूटा चीज छे कि हम जे बात कह जा रहल छी भ सके छी हमरा डॉक्टर समाज आ जते माँ दादी छथिन सब हमरा किछु ने किछु कहती। आब नया प्रोटोकॉल एलै है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड प्रायर टू 6 मंथ ऑफ एज, मतलब डायरेक्ट सूर्य के रोशनी 6 महीना से पहले बच्चा के नहीं देखाबे के छी। ठीक छै, जनरली हम सब विटामिन डी लेल आब की करै छी, एकटा नया प्रोटोकॉल छै कि हर बच्चा के जन्म सँ लऽ कऽ कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल विटामिन डी के एकटा ड्रॉप देल जाइ छै। जनरली बहुत जे पुरान छथिन सेहो ई बात के हमर काटता कि भोर के सूर्य देखाबक चाही, इवन हमर मम्मियो काटथिन बाद बुझलिए ना
1: ई
0: परंपरा रही गेल छै। आर किछ परंपरा नीको छै, ओहि टाइम विटामिन डी नहीं बनल छलै तै ई कैल जाय
1: छलै,
0: तापमानो नहीं छलै, तापमानो तो दोसर की छलै, ओजोन लेयर में एहन छेद नहीं छलै, एते पॉल्यूशन नहीं छलै, ताहि के कारण यूवी लाइट ई सब कम आबै छलै, तो ओहि टाइम की परंपरा बिल्कुल सही छलै, ओकरा गलत नहीं कहल जा सकै छै। लेकिन आब नया जे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स ई सब कहि रहल छै कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड प्रायर टू 6 मंथ ऑफ एज, लेकिन आई में हमरो कनिक बाजा में लागे है कि हमर अपने मम्मी डांट दै छथि हमरा।
1: तो परंपरा रही
0: परंपरा
1: छै, नानी के नुस्खा
0: छै आ सही छलै, ओ गलत नहीं छलै, ई एखन से नहीं चल रहल छै, हमरा बुझे हजारों साल से चल रहल छै
1: परंपरा।
0: ओहि टाइम के जे एनवायरमेंटल कंडीशन छलै से अलग छलै, एखन के अलग छै
1: जी,
0: बात बुझलिए ना, तो ओ ठीक छै। तो अब हम ई कहब कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं दियोन, अहाँ ओहि के जगह विटामिन डी के ड्रॉप आबै छै। टिपिकल बच्चा के डॉक्टर के एकटा एसोसिएशन छै, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एसोसिएशन, दुनू कहल कहने छथिन कि 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे अप टू 1 ईयर और 2 ईयर अहाँ के देवा के अच्छे, तो ओ धूप से लोग बहुत परेशान और चिंतित नहीं होबाक छै।
1: श्रोता लोकन अखन अपने लोकन के डॉक्टर अरविंद झा बतौलन जे छोट छोट नवजात जे धियापुता छै तकर हम लोकन स्थानीय स्तर पर कोना देखभाल कऽ सकै छी। आजुक अंक में बस अतबे, फिर अगला अंक में अपने लोकन से हेतै भेंट, तब तक के लेल देल जा आज्ञा, नमस्कार।
2: राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज हम सभी मना रहे हैं और इस अवसर पर आप बातचीत किए हैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा से, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं ये, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस गर्मी के मौसम में अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सकते हैं और बहुत कुछ टिप्स इन्होंने बताया कि जिस माध्यम से हम सभी अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात रंजीत जी इनकी बहुत मतलब अच्छी लगी है कि इन्होंने कहा कि माँ और दादी खुद अपने आप में एक डॉक्टर होती हैं और ये परंपरा से आती है, ये बात आ रही है कि बहुत कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है, छोटे मोटे कुछ अस्वस्थता है बच्चों की, जो माँ और दादी ऐसे ही देखभाल करते हुए घर में उसका घरेलू उपचार करते हुए, जो बच्चों के पेट में हल्का सा दर्द होता है तो वो सेक करके जो अजवाइन की बाती से इस तरह से होता है, या फिर सर्दी खांसी के लिए क्या कैसे हींग वगैरह का प्रयोग करके, तो बहुत कुछ ऐसे माँ जान रही होती हैं जो बच्चों की कैसे देखभाल की जाए और इस तरह से वो बच्चों को इस मौसम में किस तरह से रखा जाए। डॉक्टर साहब ने बताया कि ढीले कपड़े और सूती वस्त्र जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, सूती वस्त्र वो भी एकदम ढीले ढाले बच्चों के बदन से चिपके हुए नहीं, और स्नान कराना समुचित जो उसकी, तो ये सब चीज़ बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, इसके लिए इन्हें हम भी दिल से धन्यवाद करते हैं।
3: देखो सबसे पैघ बात उन्हें प्रतिभा जे प्रकृति आई से संचालित नहीं है और एलोपैथ जे इलाज पद्धति छे तैसा पहले हो तो लोग छलखिन है, तैसा पहले हो तो बच्चा जन्म ले छले, तैसा पहले हो तो लोग बीमार हो छले, आखिर ओकर इलाज केना होई छले, तो ओकरा इलाज करवा के लेल वैद्य जी सब होई छलखिन और वैद्य जी कतौ पढ़े छलखिन तो आयुर्वेदिक पद्धति से पढ़े छलखिन, जे कि ए प्रकृति के सबसे पुरान चिकित्सा पद्धति अछे। और ओ चिकित्सा पद्धति के खासियत की छले यहाँ के प्रतिभा, तो ओ चिकित्सा पद्धति कोनो केमिकल युक्त दवाई नहीं बनबै छले, वो जकरा हम अहाँ आई डेट में कहै छियै जड़ी बूटी, और आइ काल्हि के जे बेसी लोग सब पढ़ि लेलखिन हैं जकरा ओ घास पात से संबोधित करै छथिन।

0: ओ बेसी पढ़ि लेने छथिन, हुनका जड़ी बूटीसँ मतलब नहि छनि, हुनका लेल घासपर छनि। लेकिन एकटा बात हम अहाँके बताबी जे एहि प्रकृतिमे अहाँ जतेक तरहक कोनो पेड़ पौधा जीव जन्तु देखै छियै, एहि प्रकृतिके सञ्चालनमे तऽ ओकर उपस्थिति मुख्य हाथ छै। संगे एहि प्रकृतिमे जतेक चीज छै ओ कतहु ने कतहु मनुष्यके लेल, जानवरके लेल, एहि प्रकृतिके लेल उपयोगी छै।
1: बिल्कुल,
0: जे उपयोगी नहि छै, जे अनुपयोगी छै, ओकरा एहि प्रकृतिमे कतहु कोनो स्थान नहि छै। लेकिन तकरा बावजूद एलोपैथ चिकित्सा पद्धति तऽ बादमे अयलै, पहिले तऽ हमरा लोकनि आयुर्वेदे पद्धति चिकित्सा पद्धति पर जीवै छी। पेटमे दर्द होइ छलै तऽ लोक एकटा जड़ी कोनो घास पात उखाड़ि कऽ दऽ दै छलखिन, बौआ कनि खा ले। बुखार लगै छलै, सर्दी होइ छलै तऽ हमरा लोकनि बाबा दादा कहलकनि बौआ काढ़ा बना कऽ पी ले आओर ठीक भऽ जाइ छलै।
1: बिल्कुल,
0: तऽ ओ जे पद्धति छलैए आओर ई जखन एलोपैथ पद्धति छै, एहि दुनूमे जमीन आसमानके अन्तर छै। जबकि आइ वैज्ञानिक युग छथिन, वैज्ञानिक दृष्टा सब भऽ गेलखिन हँ, तऽ विज्ञानो आइ ओहि चिकित्सा पद्धतिके मानै छथिन। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता सबके हुनका मानऽ पड़लनि हँ आओर मानहेटा पड़तनि, दोसर कोनो विकल्प नहि छनि। आब आउ हम एहि डॉक्टर्स जे छै, हम डॉक्टर लोकनि सब गोटेके हार्दिक शुभकामना दै छियनि आकाशवाणी परिवारके तरफसँ, जे सब गोटे चिकित्सक।
1: पहले ही हमने कहा कि ईश्वर के रूप में चिकित्सक हमारे बीच मौजूद होते हैं, जो कितनी भी कठिन या भयानक बीमारी हो उससे हमें निजात दिलाते हैं। तो डॉक्टर को हम सभी ने भगवान का दर्जा दिया है, तो इसीलिए उन्हें शुभकामना और बधाई आज के दिन देना तो निश्चित तौर पे, आज ही के दिन नहीं हर दिन उनका सम्मान है। और उन्होंने कहा कि विटामिन डी के स्रोत, तो डायरेक्ट तो सही कहा कि आज पॉल्यूशन, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है रंजीत जी, तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो आज का जो प्रोटोकॉल है, आज की जो सोच है, उसमें थोड़ी सी बदलाव आई है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहीं ना कहीं दूर होते जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और यदि इस माध्यम से अपना उपचार करते हैं तो स्वस्थ भी होते हैं। दूसरा है कि होम्योपैथ, ये चिकित्सा पद्धति भी बहुत ही पुरानी है और आज
0: होम्योपैथी यूनानी पद्धति। और देखियो बात करबे तो अपना बहुत सारा चिकित्सा पद्धति चले प्रतिभा, म्यूजिक थेरेपी चले, जेकरा हमरा लोग साउंड थेरेपी कहै छियै, एक्यूप्रेशर थेरेपी चले हमरा एठमन, और घड़ी के सुई हमरा के किछ और इशारा कर रहल अछि, जे आब देखियौ घड़ी के सुई इशारा हमरा लोग के किछ और कर रहल अछि, जे नमस्कार मिथिला के समय सेहो कतौ ने कतौ हमरा लोग के अंकित करैया। तो सबसे पहले एकटा और फिल्म संगीत सुनै छियै, ओकरा बाद हमरा लोग चर्चा करब, और सुतलकन सुनै छियै फिल्म संगीत।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ लेते हैं आज के इस अंक
1: समारोह विदा ले छी। तो श्रोता लोकन के अदब और मुस्कान हमेशा कायम रहें। अही शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला अंक सँ हमरा लोकन ले छी विदा। नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी। समस्या

0: आए हैं, तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है, फूल प्रकृति में घोराए लगत है, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10

0: प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्ले

0: प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि

0: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
0: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को भी

0: that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President. Stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई ताइकीची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से, जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
3: वीबीजी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है, जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
2: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी कानून 2025 के लिए

0: गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपए रोजाना की उजरत आर्जी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपए थी, जिसे अब वीबी जी रामजी के तहत 327.40 रुपए रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे, ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
1: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मुहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
2: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत

0: $27 अरब से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला पांचवां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान $48 अरब 17 करोड़ की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर ₹4 फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल ₹8.5 होगा, जबकि पहले यह महसूल ₹14 था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को ₹12.5 से कम करके ₹7.5 कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तियारात का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के कायदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान एम्बापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरे कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 1-रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों, नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है, जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल

0: शुरू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैन अलाक़वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनक़िद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्र आज़म।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण।

0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार, मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख रुपए तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में विधानसभा कोटे से नव निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद उपभवन सभागार में होगा। सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने वाले नव निर्वाचित कुल 10 सदस्यों में से 8 पहली बार सदन की सदस्यता लेंगे। इनमें निशांत कुमार, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति, ललन कुमार, अशरफ अंसारी, शीला पंडित और पवन सिंह शामिल हैं। वहीं भाजपा के संजय मयूख और राजद के सुनील सिंह पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो गया है। नए कैलेंडर के अनुसार स्नातक कक्षाओं के 8 सेमेस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लोक भवन ने अपरिहार्य परिस्थिति में कुछ विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र कार्यक्रम में 1 सप्ताह की छूट दी है। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस

0: योजना पर लगभग 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट।
1: मानसी सहरसा खंड वर्तमान में एकल रेल लाइन है, जहां यात्रियों और मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 24 जोड़ी यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं। साथ ही खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, रेत और पत्थर जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भी इसी रेलखंड से की जाती है। रेलवे के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद रेल यातायात अधिक सुचारू होगा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही हर वर्ष लगभग 17,64,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: पटना सिटी के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के शेष निर्माण को निर्बाध पूरा कराने के लिए आज से अगले आदेश तक यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्माणाधीन पुल पर पिलर संख्या 23 और 67 के बीच तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर और कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पर रोक लगाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश भर में मानसून का विस्तार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता से अगले एक सप्ताह तक राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग के अनुसार जून महीने में 23 जिलों में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। गया जिले में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में प्रदेश में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। बिहार कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक बनाए गए हैं। श्री कुमार वर्तमान में CRPF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान SPG निदेशक आलोक शर्मा का कार्यकाल 21 मार्च 2027 को पूरा होने के बाद अमित कुमार निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल श्री कुमार को SPG में OSD के रूप में तैनात किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को निःशुल्क कर दिया है। यह सुविधा आज से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आधार मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले इस सुविधा के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित था। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान

रामचंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 क्रिकेट श्रृंखला शुरू हो रही है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आज टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने की संभावना है। वैभव को संजू सैमसन या ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मैचों की श्रृंखला के दौरान वैभव सूर्यवंशी को अवसर नहीं देने को लेकर टीम चयन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी के दौरान वांछित अपराधी पांडव गिरोह के मुख्य सरगना संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर हत्या और रंगदारी समेत 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई तक 9 टीमें नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 अंचलों में अतिक्रमण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पहली बार एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू, नया सत्र आज से, जनवरी में सम सेमेस्टर की पढ़ाई। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है वीबीजी रामजी में न्यूनतम मजदूरी अब 300 रुपए से कम नहीं होगी। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है मौसम की मार, 15 के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार। दैनिक भास्कर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को नुकसान नहीं। अखबार लिखता है E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय सागर ने मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वास भूमि प्रमाण पत्र। आज अखबार के शब्द हैं 18 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नव निर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराए लगैत अछि ऊर्जा आबयवला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: जिंदगी कैसी है बहेली हाय।
7: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

यकीनन ये शायर के दिली जज्बात हैं और ये जज्बात इंसानी फितरत का एक ऐसा खासा है कि जो शख्स इस मरहले से गुजरता है उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मराहिल आते रहते हैं, लेकिन इस कश्मकश में, अधूरी मोहब्बत में, अधूरी ख्वाहिश में इंसान को एक नया लुत्फ और एक नई कशिश भी महसूस होती है। तो सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू पुराना अंजुमन अब यहीं अख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

मेरे लिए 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

बैराग फिल्म के गीत को भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत सावन को आने दो से लिया गया है, आवाज़ें जसवाल सिंह और कल्याणी मित्र की है। गीत रचना गौरव कर्णपुरी की और संगीत रचना राजकमल की। तो आइए सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो का ये गीत।

0: यह आवाज़ें थी जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की फिल्म सावन को आने दो में। गीत रचना गौहर कानपुरी की थी और धुन राजकमल की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।

0: सावन को आने दू में। गीत रचना गौहर कानपुरी की थी और धुन राजकमल की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

जब जब फूल खिले फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनु को फिल्म आजा सनम में। गीत रचना गौहर कानपुरी की है और धुन कविता पौडवाल की।

यह वजह थी अनुराधा पौडवाल और मनु की फिल्म आजा सनमे। आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत।

0: ये आवाज़ थी मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म मेरे हम सफ़र में। अब चलते चलते कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा

0: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते
1: हैं। फिल्म आन मिलो सजना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम।

अभी आप अरविंद कुमार झा के स्वर में देवी गीत सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं कल्याणी सिन्हा व सहेली के स्वर में ये झूमर गीत।

अभी आप कल्याणी सिन्हा व सहेली के स्वर में बटगमनी सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं प्रेमिला देवी के स्वर में ये झूमर गीत।

अभी आप कल्याणी सिन्हा के स्वर में ये झूमर सुन रहे थे। लोक गीतों का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये नचारी।

अभी आप शारदा सिन्हा के स्वर में नचारी सुन रहे थे। इसके साथ ही लोक गीतों का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारा अगला प्रसारण शास्त्रीय संगीत कुछ ही पल में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं राजेंद्र प्रसन्ना। आइए इनसे सुनते हैं बांसुरी वादन पर राग यमन।

श्रोता, अभी आप शास्त्रीय संगीत में सुन रहे थे राजेंद्र प्रसन्ना से बांसुरी वादन पर रागी अमन। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT

0: और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
1: जी,
2: है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को, अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग

0: कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्यधारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि

0: सांकेतिक भाषा क्या है
1: okay.
0: और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है?
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी.
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी.
1: हैं. जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है
0: जी.
1: आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा. लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी.
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी.
1: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है. तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
0: जी.
1: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं. भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी.
1: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है.
0: जी.
1: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं. तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है. और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत.
0: जी.
1: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
0: जी.
1: ठीक है. लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में.
0: बिल्कुल.
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
0: जी.
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है.
0: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
1: जी
0: और समावेशी शिक्षा के बारे में
1: जी
0: जानकारी. तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं.
1: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
0: जी.
1: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी तो
0: जी.
1: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं.
0: जी.
1: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
0: जी.
1: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
0: जी.
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके. इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
0: जी.
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है. इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं. और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है. तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
0: जी.
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
0: जी
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा. अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
0: जी.
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
0: जी.
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
0: जी.
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
0: जी.
1: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो. टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।

0: जी जी
1: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
0: बिल्कुल।
1: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
0: जी।
1: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
0: जी।
1: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
0: जी।
1: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
0: जी।
1: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
0: जी।
1: तो ये भी एक हमारी पहल है।
0: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
0: जी।
1: और एक और सरल उपाय है,
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
0: जी।
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
0: जी।
1: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
0: जी,
1: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
0: जी।
1: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
0: जी।
1: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
0: जी।
1: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
0: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और

0: चीज भी है। इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

अब आप आने लेंगे हमारे कैंसिल नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर सेलिब्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडा, संगीत निर्देशन विनोद ने किया है। गीतकार हैं योगेश पंडित।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
1: एनपीएस पेंशन?
0: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
1: बुढ़ापा सुरक्षित?
0: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।

फिल्म वनवास में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सोनू निगम को। गीतकार थे शहीद कादरी, संगीत निर्देशन मिथुन ने किया था। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म वेदा से। आइए सुनते हैं अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी का यह गीत। गीत लिखा था प्रशांत पांडे ने, संगीत निर्देशन राम संपत के थे। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और जुबीन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म वेदा से। गीत रचना मनोज मुंतशिर की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है रॉकी शिव ने।

राजबर्मन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मिसन मंजू का यह गीत। श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं इसी फिल्म से राजबर्मन की आवाज में।

इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नाड़ी संसार सुनने वाली सभी बहनों को विजेता का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी संसार में स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी लेंगे, हर दिन कुछ खास में जानेंगे स्वास्थ्य टिप्स और हम वार्ता भी सुनवाएंगे। तो आइए अब कार्यक्रम में देर न करते हुए हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की। बहनों, एक ईश्वर है जो हमें इस धरती पर भेजते हैं और एक चिकित्सक है जो हमें इस धरती पर जिंदगी देते हैं। हमारे चिकित्सक केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि हमें जीवन दान देते हैं। इसलिए इस धरती पर हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं। हमारे डॉक्टर हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, तो इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन डॉक्टरों को समर्पित है जो अपनी मेहनत, लगन, सेवा और समर्पण से लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं। बहनों, हम उस कोरोना काल को कभी नहीं भूल सकते जब हर कोई सिर्फ अपने काम से ही घर से निकलते थे और बाकी का समय घर पर ही व्यतीत करते थे, पर हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कोरोना के मरीजों का या और भी दूसरी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का इलाज करते थे। उनका ये कर्तव्य बीमार व्यक्तियों को जीवन दान दे रहा था। बहनों, जो चिकित्सक होते हैं वो अपने मरीजों को प्यार से, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर उन्हें वैसे ही आधा ठीक कर देते हैं। मरीज़ चिकित्सक के संपर्क में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो समय से पहले ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके इलाज का जादू नहीं बल्कि उनके प्यार का जादू होता है। तो इसलिए हम उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप कहते हैं। बहनों, ये दिन देश के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। उनके चिकित्सा और समाज सेवा के असाधारण योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1991 में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मना रहे हैं। बहनों, आज के दिन को मनाते हुए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जीवन दान देने वाले डॉक्टर भी इंसान ही हैं। भले ही हम उन्हें भगवान का दर्जा दें, हमेशा मरीजों से घिरे रहना, उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझ उसे दूर करना, लंबे समय तक काम करना, मानसिक दबाव, भावनात्मक दबाव और पेशेवर चुनौतियाँ उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, तो डॉक्टरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मरीजों की। बहनों, हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करते हैं। आज हर साल उनके लिए जो सम्माननीय दिन मनाया जाता है वो केवल इसलिए कि उनकी अथक सेवा को मान्यता दी जा सके और समाज में उनके योगदान का सम्मान किया जा सके। बहनों, आज का ये खास दिन मनाकर हम अपने चिकित्सकों के प्रति अपार कृतज्ञता और गहरे सम्मान को व्यक्त करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात आपको सुनवाते हैं एक फिल्मी गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुंकी वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे अल्ट्राटेक मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों आइए सुनते हैं एक वार्ता हमारी रेडियो सहेली श्वेता से। विषय है किचन गार्डन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे घर की रसोई को तो ताजगी देता ही है, साथ ही हमारे परिवार की सेहत और वातावरण दोनों का ख्याल रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किचन गार्डन की। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हरी सब्जियां, हरी पत्तियां और मसाले हम अपने ही आंगन, छत या बालकनी में उगा सकते हैं? बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि इसके लिए बड़ी जमीन की भी जरूरत नहीं होती। आप इसे छोटे छोटे गमले, ड्रम, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतलों में भी उगा सकते हैं। किचन गार्डन से सबसे बड़ा लाभ है ताजी और बिना रसायन वाली सब्जियाँ, जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक, टमाटर, मिर्च, लौकी, भिंडी, सब आपके अपने गार्डन में ही उग जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बच्चों की भागीदारी भी हो सकती है। अगर बच्चे पौधे को लगाना और संभालना सीखें तो उनमें प्रकृति के प्रति लगाव भी बढ़ता है। किचन गार्डन से घर की रसोई खर्च भी घटती है और मानसिक शांति भी मिलती है। पौधों को बढ़ते देखना, हरियाली का आनंद लेना, ये सब तनाव को दूर करने का आसान सा उपाय है। और श्रोताओं, अगर आपके पास जगह कम है तो वर्टिकल गार्डन या हैंगिंग पॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए बहनों, आइए संकल्प लें कि हम अपने घर की छत, आंगन या बालकनी में छोटा सा किचन गार्डन जरूर लगाएंगे। ये कदम हमें स्वस्थ रखेगा, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेगा और घर के वातावरण को सुंदर बनाएगा। तो चलिए इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे आज के लिए विदा। तो सुनते रहिए आप हमारा कार्यक्रम नारी संसार, क्योंकि ये है आपके जीवन की सच्ची साथी। नमस्कार।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय के रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों आइए अब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के महत्व की। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक

संसाधन मतलब हवा, पानी, मिट्टी और जंगलों को सुरक्षित रखना। ये हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहनों, देखा जाए तो हम पूर्ण रूप से पर्यावरण पर आधारित हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस मिट्टी पर हम खेती कर भोजन की सामग्री ग्रहण करते हैं और जिस प्रकृति के बीच हम रहते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शुद्ध रहे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। पर अफसोस, आज पर्यावरण दूषित होने के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आज जगह जगह पेड़ों को काटकर वहां बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं। आज पेड़ कम लगाए जा रहे हैं और अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। कल कारखानों का कचरा सीधा नदी, पोखर, तालाब में बहाया जाता है। नतीजा वो पानी भी दूषित हो जाता है। वहाँ मवेशी स्नान कर वहाँ का पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। सड़कों पर जो अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, उसका धुआं सीधा हमारे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुँचता है और हम बीमार हो जाते हैं। कूड़े कचरे को सही जगह ठिकाना नहीं लगाए जाने से उसकी बदबू भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है और आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। आज इन सभी कारणों से पर्यावरण संकट में है। आज इन्हीं कारणों की वजह से अब पहले की तरह वर्षा नहीं होती, अब पहले की तरह चापाकल में पानी नहीं होता, अब लोगों को कृत्रिम साधन का सहारा लेना पड़ता है। धीरे धीरे चापाकल विलुप्त होता जा रहा है। नदी, तालाब में पानी सूखता जा रहा है या जहाँ पानी है वो दूषित होता जा रहा है, किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरह पर्यावरण की देखरेख में कभी कभी भी किसी भी वजह से संकट में आ सकती है। बहनों, हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए इसके लिए खुद भी कारगर कदम उठाना होगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। मतलब अधिक से अधिक संख्या में हमें पेड़ लगाना होगा। सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े घने वृक्ष लगाने होंगे ताकि उसकी छाया में राह चलता मुसाफिर आश्रय पा सके और आराम कर सके। जहाँ तक संभव हो पेड़ों को काटने से रोकना होगा। इसके अलावा प्लास्टिक से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी बचना होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन जैसी चीज़ भी कभी नष्ट नहीं होती। इसे मिट्टी में दबा दिया जाए या इसे जलाया जाए, दोनों ही सूरतों में ये नुकसान ही पहुंचाती है। इसी तरह पटाखे का धुआं भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो यदि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो इन बातों पर अवश्य ध्यान देना होगा, तभी हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। मतलब वर्षा समय से होगी, पानी की दिक्कत नहीं होगी, व्यक्ति खुली हवा में खुलकर सांसें ले सकेंगे, हम घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा खा सकेंगे, हम जो भी भोजन करेंगे वो शुद्ध मिट्टी पर उपजी होगी, इस भोजन को ग्रहण कर हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो बहनों, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम खुद भी जागरूक हों और दूसरे को भी जागरूक करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसके महत्व को समझे और वो भी पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करे और हमारा पर्यावरण सदैव स्वच्छ सुंदर बना रहे। हमें पंछियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़े, नदियों की कलकल करने की आवाज़ आए और इस तरह प्रकृति की सुंदरता सदैव बनी रहे। तो आइए बहनों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक और फिल्मी गीत का।

0: अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहर इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं 10 से 15 पक्की सड़क में मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों आइए अब चलते हैं अपने अगले अंक की ओर जिसका नाम है हर दिन कुछ खास। आज इस अंक के अंतर्गत हम जानेंगे अच्छी नींद के लिए कुछ उपाय। बहनों रोजाना सोने से पहले गर्म दूध में एक चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पीना बड़ा ही फायदेमंद होता है। अगर आप दूध नहीं लेती तो पानी या फलों के जूस में भी जायफल पाउडर मिलाकर ले सकती हैं। जायफल को घी में घिसकर सोते समय पलकों पर लगाने से नींद अच्छी आती है। जायफल और जावित्री के पाउडर को दूध में मिलाकर पीना भी काफ़ी असरदार होता है। एक और उपाय है बहनों, एक चम्मच जीरे का पाउडर पके केले में लगाकर खाने से नींद जल्दी आती है और अच्छी आती है। एक चम्मच जीरा भूनकर उसमें एक कप पानी मिलाएं, फिर 5 से 7 मिनट तक के लिए उसे उबालें, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसे छानकर चाय की तरह पिएं। आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी, आप तनाव मुक्त भी रहेंगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। गर्म दूध में केसर के कुछ रेशे मिलाकर पीने से अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। अगर गर्म दूध में चुटकी भर दालचीनी पाउडर मिलाकर पिया जाए तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है। एक चुटकी दालचीनी पाउडर एक चम्मच शहद में मिलाकर लेने से मानसिक तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। अच्छी नींद के लिए तुलसी के रस को एक चम्मच शहद में मिलाकर पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा नियमित रूप से कम 30 मिनट व्यायाम करें। ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद है ही, इससे नींद भी अच्छी आती है। बहनों रोजाना सोने से पहले 1 घंटा पहले टीवी लैपटॉप मोबाइल मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसे आप बंद कर दें तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये था बहनों हमारा आज का स्वास्थ्य टिप्स। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई टिप्स है तो आप हमें अवश्य बताएंगे। तो दीजिए इसी के साथ नाड़ी संसार कार्यक्रम से अपने रेडियो से अलविदा।

0: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी

0: डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोता 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 1:15 पर। दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनाएंगे रोजगार सूचना।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। संध्याकाल 5 बजे हम आपको सुनवाएंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे संध्याकाल में 5:40 पर।

6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों को, साथ ही गांव घर कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर। गांव घर कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे घर आंगन, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

संध्या 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 7:52 पर। मैथिली साहित्य का कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:00।

रात्रि काल 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे लोक गीतों का लोक माधुरी में। गीतों के रंग हम आपको सुनाएंगे रात 10:30 पर। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोतो अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म भाई बहन से।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
4: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
3: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
5: तुम नाचो रस बरसी,
3: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, अब आप आन लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का, तो ले चलते हैं हम आपको फिल्मी गीतों के सफर पर और सुनाते हैं मोहम्मद रफी और उनके साथियों की आवाज में फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत का गीत, संगीत निर्देशन रवि ने किया है।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और उनके साथी। संगीत निर्देशन रवि ने किया था। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश अवलता की आवाज में फिल्म फर्ज से। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

रोशन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात की रात से। आवाजें थी कमाल बरोत और सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा था साहिर लुधियावी ने। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म धूल का फूल से, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में।

साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म इज्जत से। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार आर डी बर्मन। फिल्म का नाम अगर तुम ना होते।

0: कभी तो हंसाए।
1: मन्ना डे को भी आप सुन रहे थे फिल्म आनंद में। गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। फिल्म तीन देवियां।

0: श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म तीन देवियां में। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीपीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त TDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे।

0: तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 3,241 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खान पान व्यापारियों को लाभ होगा। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 के तहत की गई है। इसके तहत 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपये निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह 6,000 रूपये होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। पंकज कुमार दारात को पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। कुल 10 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गयी। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं अररिया, दरभंगा, किशनगंज, शिवहर और वैशाली समेत 12 जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फ उल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। विकसित भारत रोजगार ग्रामीण एक्ट आज से लागू हो गया है। वजारत देही तरक्यात ने कहा कि वीबीजी रामजी एक्ट के तहत हर एक माली साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि रवा माली साल में इस मंसूबे के अमल दरामद के लिए 95,692 करोड़ रुपए का नज्म किया गया है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:11 मिनट हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक के 2026 में कुल 1829 पद आवेदन किए जाने हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा इस पद के लिए 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB ने 2026 में कुल 130 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 है और आवेदन जमा करने की तिथि अंतिम तिथि 21/7/2026 है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा नहीं दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा 21 साल है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jkssp.nic.in है।

निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 से और आवेदन जमा करने की तिथि अंतिम तिथि 21/7/2026 है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा नहीं दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा 21 साल है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jkssp.nic.in है। इस पर जाकर आप इसके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 में कुल 607 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इसके पद के लिए आवेदक के न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर। BSNL ने 2026 में कुल 100 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/6/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए आवेदक के न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। इस पद की विस्तृत जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर मिल जाएगी। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना। अब समय हो चला है हिंदी दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल

0: डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से

0: निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagements भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है।

0: 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः पाने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म आंखें से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। गीत रचना साहिल लुधियानवी की है। संगीत दिया है रवि ने।

एमजी हसरत के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोरा कागज से। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया था। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे फिल्म आरजू से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और इस गीत को धुन दिया है शंकर जयकिशन ने।

संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म आस का पंछी से। गीत रचना हसरत जयपुरी की है। इस गीत को धुनों से सजाया है एसडी बर्मन ने। इस गीत को धुनों से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

श्रोता मोहम्मद रफी और बलबीर की आवाज में भी आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म का यह गीत। गीत लिखा था कैफी आजमी ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं मंजूर खान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड रोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं जिच्छा मिल रही है अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गाँव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह। ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में मंजूर खा को।

देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। अल्ट्राटेक

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। संदेश पूर्व आप सुन रहे थे सुगम संगीत। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर

0: सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें तो हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
0: तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बिना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है, ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की

0: प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं। फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है। मतलब आप हाँ। गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल। बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
0: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।

0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है, शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है, हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं, या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी, की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं, उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना, कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके, तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता,
0: बस अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं, वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है, वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल। इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी है। अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले ही प्यार था, अभी भी प्यार है
1: वो और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन, और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल। इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए

0: तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए। अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ,
1: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
1: मैंने कहा ना
0: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान रहे कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काटकर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद भी
1: सुन लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सही।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर

0: विद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई, वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
0: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
0: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
0: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
0: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
0: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
0: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
0: जी।
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश,
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था, कहानी लिखना।

0: मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी।
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा
0: जी? एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात।
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता
1: है। बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: शंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके रचना

0: है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो और उनके रचनावली के 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। यह सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीसे हैं। ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
0: हो रहा है,
1: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
0: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
1: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा।

0: व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतीय हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था, पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है।
0: देखिए, डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है।

0: जो बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
1: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
0: जी।
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
0: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
1: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता तो, होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
1: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
1: जी,
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है,
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाए।
0: आइए सुनते।

0: थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं
0: जी।
1: सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है,
0: कुएं
1: का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं,

0: तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था, दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है, प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि याजावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
1: नहीं।
0: है, और याजावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन याजावरी से होता है।
1: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका ये, इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।

आकाशवाणी दरभंगा के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस खास अंक में गीत संगीत के साथ तो हम आपका मनोरंजन करेंगे ही, साथ ही एक ऐसे विषय पर चर्चा भी करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण तीनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, विषय है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस अर्थात इंटरनेशनल फ्रूट्स डे, और इसके महत्व को हम सभी जानते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। किंतु हमारे लिए आपका मनोरंजन भी उतना ही आवश्यक है, तो इस भोले बाबा के नचारी से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस कार्यक्रम को, और फिर हम लोग चर्चा पे आएंगे।

दोस्तों, अभी आप शारदा सिन्हा के स्वर में ये नचारी सुन रहे थे। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस अर्थात इंटरनेशनल फ्रूट्स डे है, और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा। तो दोस्तों, फल प्रकृति का अनमोल उपहार है, यह हम सब जानते हैं। इनमें वाइटमिन, खनिज लवण, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट तमाम चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से फलों का सेवन हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा तथा अन्य अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक माना जाता है। अभी आज के डेट में, आज के युग में हम लोग इतने अवेयर हैं सोशल मीडिया से, इंटरनेट्स के जरिए या अन्य गैजेट्स के माध्यम से, हम लोग फलों के महत्व को भली भांति समझते हैं और उस हिसाब से हम लोग सेवन भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले, 25 साल 50 साल पहले, हम लोग देखते थे कि जब हम में से या हमारे समाज के लोग बीमार पड़ते थे और डॉक्टर जब के द्वारा कहे जाने पर फलों का सेवन करते थे, क्योंकि उस समय फल थोड़ा आउट ऑफ अप्रोच भी हुआ करता था। जैसे देहात में उपलब्धता नहीं था तो दिक्कतें होती थी, लेकिन आज के समय में हम लोग बहुत अवेयर हैं और फलों के महत्व को समझते हैं और इसे नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस का उद्देश्य श्रोताओं, लोगों को फलों के पोषण महत्व के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। आज के समय में जब फास्ट फूड और ये जंक फूड्स का चलन इतना बढ़ रहा है, फिर भी फलों का महत्व कहीं से कम नहीं है और कहें तो बढ़ गया है। खास करके आप युवाओं के लिए तो विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ये जो ग्रोइंग फेज होता है जिसमें आपके मसल्स डेवलप करते हैं, उस समय फलों का तो महत्व आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उस समय जब आप ग्रोइंग पोजीशन में होते हैं तो शरीर को अतिरिक्त

ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ये फलों का सेवन प्रदान करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक एकाग्रता में भी सहायक होते हैं। आम, केला, अमरूद, सेब, पपीता, संतरा और ये अन्य तमाम किस्म के मौसमी जो भी फल हैं न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषण से भी भरपूर होते हैं। समय रहा तो हम आज की चर्चा में जानेंगे कि दैनिक जीवन में फलों को किस प्रकार शामिल किया जाए, उसके टाइमिंग के बारे में, उसके मात्रा के बारे में, अगर समय रहा तो, क्योंकि आज एक और डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, तो आज हम उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। अगर समय बचा तो फलों पर और भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए अगला गीत सुनते हैं।

राखी कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। श्रोताओ, आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन हम उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो दिन रात लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। डॉक्टर केवल रोगों का उपचार ही नहीं करते, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, बीमारियों की रोकथाम और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महामारी हो, प्राकृतिक आपदाओं में या अन्य संकटों के समय डॉक्टरों ने जिस साहस, धैर्य और सेवा भावना का परिचय दिया है, वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के युवाओं के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। यह हमें मानव सेवा, अनुशासन, परिश्रम और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे महामारी के टाइम के समय में या कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं में डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे युवा कितने तत्पर होकर सेवा भाव में लगे रहते हैं। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के बढ़ने के उपयोग के बावजूद डॉक्टर और मरीज के बीच का जो विश्वास का संबंध है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतना

उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, फिर भी डॉक्टर और मरीज का जो ये आपसी विश्वास का संबंध है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आई है। और एक साधारण धारणा है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हम सब लोग मानते हैं, क्योंकि जीवन देने की क्षमता डॉक्टर में है। डॉक्टर्स डे हमें यह भी याद दिलाता है कि केवल बीमारी का इलाज ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांच कराना भी आवश्यक है। हम लोग मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच में थोड़ा कोताही बरतते हैं, और जब तक किसी तरह की परेशानी का सामना ना हो तब तक हम लोग जांच में नहीं जाते हैं। ये थोड़ा इस मामले में थोड़ा हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा कि जब आप एक सर्टेन एज में 40+ 50+ में आते हैं या उससे पहले भी, तो नियमित एक जांच साल में एक बार हो या अपने सुविधा अनुसार कराते रहना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के हर ऑर्गेन की जानकारी आपको होते रहता है, सब चीज़ों के फंक्शन के बारे में आप अपडेट रहते हैं और उस हिसाब से अपने दिनचर्या को बनाते हैं, अपने डाइट को बनाते हैं, खान पान को रेगुलराइज करते हैं। तो आइए इस डॉक्टर्स डे पर हम सभी चिकित्सकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके योगदान को सम्मान दें, साथ ही स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का भी संकल्प लें। डॉक्टर तो पेशे से होते हैं, लेकिन आप युवाओं को सेवाभाव डॉक्टर के साथ मिलकर समाज में करना है और हमें करना है आपका मनोरंजन। सुनते हैं ये बढ़िया सा गीत राधा मोहन मिश्र के स्वर में।

हेमकांत झा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, और आइए अरविंद कुमार झा के स्वर में सुनते हैं ये लोकगीत।

विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोक गीत। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम युववाणी को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। कल इसी वक्त एक नए अंक युववाणी के नए अंक के साथ होगी आपसे मुलाकात।

युववाणी। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको इंतजार होगा फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्मों के नगमे। तो लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गदर 2 का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है मिथुन ने।

0: तक। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

अरिजीत सिंह को भी आप सुन रहे थे, फिल्म थी चंदू चैंपियन। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और प्रीतम का संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म छत्रपति से। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान और नक्काश अजीज ने, मयूरपुरी के बोल हैं और तानिश्क बागची का संगीत। फिल्म छत्रपति।

पुष्पा टू के इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबीजी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए

0: शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचना हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर प्रसारित होंगे। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7 से। फिल्म संगीत शाम 7:52 से हमारे श्रोता सुन सकते हैं। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा रात 8:15 से। समाचार संध्या रात 8:45 पर न्यूज एट 9 9 से एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से आप सुनते हैं।

कार्यक्रम चर्चा का विषय है, रात 9:30 से, और इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाते हैं। लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी रात 10 से, और फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग रात 10:30 से आप सुन सकते हैं। और अब कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 पर। कल हमारे किसान श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे पपीता का आधुनिक खेती विषय पर। स्वास्थ्य चर्चा प्रातः 6:05 पर। कल हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर सुनील थापर, और ये बताएंगे दांतों में कनकनी, कारण और निदान।

हमारे केंद्र की भक्तिमय प्रस्तुति वंदना प्रातः 6:10 से। रामचरितमानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 पर, और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला प्रातः 7:05 पर प्रसारित होंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के शेष एवं कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। स्थानीय सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे विनय कुमार झा, काशी नाजा किरण एवं गौतम मिश्र। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कुछ ही पलों में हमारे पटना केंद्र से आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। विकसित भारत रोजगार आओर आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आइ सँ लागू भऽ गेल। ग्रामीण विकास मंत्रालय कहलक अछि जे VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे 125 दिनक रोजगारक गारंटी होयत। हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे चालू वित्तीय वर्ष मे एहि योजना के लागू करबाक लेल 95,692 करोड़ टाकाक प्रावधान कयल गेल अछि। राज्य सरकार जी रामजी योजना लागू करबाक लेल पैघ स्तर पर तैयारी कयने अछि। योजना के सुचारू रूप सँ चलेबाक लेल मुख्य सचिवक अध्यक्षता मे राज्य संचालन समितिक गठन कयल गेल अछि। संचालन समिति मे ग्रामीण विकास विभाग सहित 17 विभागक सचिव लोकनि के सदस्यक रूप मे शामिल कयल गेल अछि। एहि संग जिला अधिकारी के जिला कार्यक्रम समन्वयक आ उप विकास आयुक्त के जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित कयल गेल अछि। विकसित भारत जी रामजी योजनाक अंतर्गत ग्राम पंचायत 10 लाख टाका धरि, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख, DDC 1 करोड़ आ जिलाधिकारी 30 करोड़ टाका धरिक योजनाक स्वीकृति कऽ सकैत छथि। तेल कंपनी सब 19 किलोग्राम वला व्यावसायिक LPG सिलेंडरक दाम मे 183 टाका 50 पैसाक कमी कयलक अछि। एहि कटौतीक बाद पटना मे आब 19 किलोग्राम व्यावसायिक LPG सिलेंडर 3,241 टाका मे भेटत। पासपोर्ट आवेदन फीस मे आइ सँ वृद्धि लागू भऽ गेल। ई वृद्धि नव पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 अंतर्गत कयल गेल अछि। एकर अंतर्गत 36 पन्ना वला नव पासपोर्ट अथवा दोबारा पासपोर्ट बनेबाक खर्च आब 2,500 टाका होयत। 8 पन्ना वला साधारण पासपोर्ट अथवा दोबारा जारी पासपोर्टक खर्च आब 3,500 टाका तय कयल गेल अछि, जखनकि तत्काल योजनाक अंतर्गत ई 6,000 टाका होयत। शिक्षा विभाग TRE3 के अंतर्गत बहाल भेल ओहि विद्यालय शिक्षक लोकनिक सेवा समाप्त करबाक निर्देश देलक अछि जे शिक्षक NIOS सँ 18 महीनाक DLED कोर्स केने छथि। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक विक्रम विरकर के दिस सँ जारी कयल गेल पत्र मे सभ जिला शिक्षा पदाधिकारी लोकनि के तय प्रक्रिया पालन करैत एहन शिक्षक लोकनिक सेवा समाप्त करबाक आ एकर जानकारी विभाग के तुरंत देबाक निर्देश देल गेल अछि। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कहलनि जे राज्यक सभ सरकारी अस्पताल आ स्वास्थ्य संस्थान मे CCTV कैमरा लगाओल जायत। एकर निगरानी कंट्रोल रूम सँ कयल जायत ताकि डॉक्टर आ स्वास्थ्यकर्मी लोकनिक समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कयल जा सकय। पटना में पत्रकार लोकनि सँ गप करैत स्वास्थ्य मंत्री बतौलनि जे अस्पताल सब में दवाईक उपलब्धता आ ओकर वितरण के नियमित मॉनिटरिंग होयत आ लापरवाही भेटला पर संबंधित कर्मचारी लोकनिक विरुद्ध कड़गर कार्रवाई कयल जायत। विधान परिषदक नवनिर्वाचित सदस्य लोकनि के आइ शपथ दियाओल गेल। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्य लोकनि के शपथ दियौलनि। भाजपा सँ भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर आ शीला पंडित शपथ लेलनि। ओतहि जदयू सँ स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति आ ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सँ अशरफ अंसारी शपथ लेलनि। एकर अतिरिक्त राजद के सुनील कुमार सिंह सेहो शपथ दियाओल गेल। आइ राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाओल जा रहल अछि। आजुक दिन जनताक स्वास्थ्यक रक्षाक लेल डॉक्टर लोकनिक समर्पण आ पैघ योगदान के प्रदर्शित करैत अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार एहि अवसर पर सब डॉक्टर लोकनि के बधाई आ

0: शुभकामना देलनि। प्रदेशक अधिकांश भाग में मानसून सक्रिय भऽ गेल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में कहलक अछि जे आई भागलपुर, कटिहार आ समस्तीपुर जिला में तेज हवाक संग भारी वर्षाक संभावना अछि। ओतहि अररिया, दरभंगा, किशनगंज, शिवहर आ वैशाली सहित 12 जिला में तेज हवाक संग मेघ गर्जन आ वज्रपातक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: घर आंगन सुननिहार सब श्रोता लोकन के संगे सब बहिन सबके मुनी दिस स्नेह पूर्वक नमस्कार है। लाल बहिन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मुनी बहिन आ संगे सब बहिन आधी आबादी बहिन लोकन के हमरो दिस नमस्कार छन। आ मुनी बहिन आई बुध दिन है आ बुध दिन के अपना सब बाट जोहित रहे जो सब बहिन से आई भेंट घाट है गप सप करब बहुत रास जानकारी एक दोसर से
0: घर आंगन के जे रमन चमन है वो अपन बहिन सबक गप्पे सब सब तो है। आ देखियो आई बुध दिन है 1 जुलाई बहुत विशेष दिन है बहुत रास आई महोत्सव वन महोत्सव सप्ताह से अपना सब मना रहल छी जे 1 जुलाई से 7 जुलाई धरि अपना सब मनाएब।
1: आ देखियो एकर मुख्य उद्देश्य की है मुनि बहिन इ तो सब गोटा बुझे छी जे बहुत वन महोत्सव वन के कोना बचाबी बेसी से बेसी गाछ वृक्ष के रोपी जैसा कि पर्यावरण संतुलित रहत आ गाछ के माने कांच गाछ के कखनो कटाई नहीं करबाक चाहिए आ नव नव गाछ सबके प्रण लेबाक चाहिए जागरूक करबाक चाहिए एक दूसरा के जे बहुत गाछ अहाँ लगाओ गाछ लगला से कतेक रास लाभ है से तो अपना सब गोटा बुझे छी
0: रास ऐ के लेल योजना चलाओ जा रहा है सरकार दिस से कि एक टा गाछ अपन माँ के नाम से लगाओ अहाँ के जन्मदिन गाछ लगाओ वैवाहिक वर्षगांठ तखन गाछ लगाओ कतिक निक छे जे अहाँ जिनका से प्रेम करी छे हुनकर नाम से लगाओ।
1: आ देखियो आई अहाँ जे देखियो आई हमर बाबा दादा नाना जे लगेने छथि जे गाछ आई आम फड़ैए अपना सब खाइ छी तऽ कहै छी ने जे ई हमर कक्का लगेने छलाह ई हमर बाबा लगेने छलाह ओ आम एखन तक हम खाइ छी तहिना हमहूँ सब जे किछु लगा कऽ जेबै तऽ जहिया हमसब नहि रहब तऽ हमरो तऽ आबयवला पीढ़ी कहथिन ने जे माँ ई लगा कऽ गेल छलै
0: नाम रहि जाय जतेक बेर मिठगर ई गाछके जे आम छै बड़ मिठगर
1: छै माँके हाथके लगायल छनि नहि तैँ निश्चित रूपसँ जीवनमे आ देखियौ ई कोनो बहुत पैघ बात नहि छै मनमे जज्बा हेबाक चाही ठानि लेबाक चाही जँ सालमे बर्थडे एक दिन होइए जन्मदिन एक दिन होइए एकटा सालमे किया नहि लगायब ओकरा नीकसँ पानि देबै जे ओ गाछ जीवित रहए आ फेर दोसर साल दोसर लगा लेब तऽ एनाके जे करब तऽ एहिसँ कतेक लाभ होइ छै तऽ देखिए रहल
0: देखै छी अपन सबके मिथिलाञ्चलमे तऽ कतेक पाबनि तिहार होइत अछि लाल बहिन जेकि गाछेसँ होइत अछि।
1: ई तऽ अहाँ बहुत नीक गप मोनी बहिन कहलहुँ हँ देखियौ ने एखने अपना सब बरसाइत केलहुँ हँ तऽ बड़क गाछक पूजा करै छी तऽ बड़के गाछ जहन लगायब जहन गाछ बचल रहत तहने ने अपना सब पूजा करै छी बृहस्पति भगवानके पूजा करै छी केराके गाछ
0: संरक्षण के लिए पावन तिहार सब गाछ वृक्ष के अपना सब पावन करै छी तऽ लगेबे करब
1: केरा पात के कते काज होइए कोनो पावन करै छी तऽ केरा पात के काज जहन लगायब तखने ने आब देखियौ आमे के देखियौ महु के देखियौ ब्याह एखने ब्याहक समय देखबै आम महु ब्याहल जाइए अपना सबके
0: धात्री के लअ लिए औषधि अछि
1: औषधि अछि आ अथी अच्छे नवमी के
0: ओहिठाम भानस करबै छी
1: खाइ छी राम मने भोजन लोक कराबैए कहबाक मतलब जे अपना सबके ओहिठाम ई सब प्रथा अछि प्राचीने काल से प्रथा अछि जकरा हमसब निमाहै छी।
0: और तो की कहू लाल बहिन
1: नीम के गाछ लगबै छी अपना सब
0: आप संरक्षण के गप केलहुँ वन सब महोत्सव के गप केलहुँ जखन एते बड़का महोत्सव मनाबै छी अपना सब तो जूड़ शीतल के लअ लिए जूड़ शीतल में काली नेने

0: ककने जुड़ाबै छी, गाछो वृक्ष के जुड़ाबै छी।
1: भोरे भोरे उठ के बसिया पानि लऽ कऽ बाल्टी में देखै छियनि सब गोटा गाछी चलि जाइ छथिन आ सब गाछी में पानि दै छथिन।
0: एकदम एकदम, तऽ अपना सबके तऽ इएह संस्कृति अछि जे कि सब किछु के जुड़ा कर राखै छी।
1: आ फूल पौधा तऽ अपना सब लगबते छी सब दिन। कहबाक छै ई जागरूक करबाक छै जे हमरा लोकनिके देखि रहल छियै पर्यावरण कते असंतुलित भऽ रहल अइ, कोनो चीज समय पर नहि बरखा भऽ रहल अइ नहि समय पर, तऽ एहि लेल हमरा लोकनिके ई जागरूक रहबाक चाही, सबके जागरूक करबाक चाही जे बेसी सँ बेसी गाछ के संरक्षण संवर्धन करबाक चाही। आ चिड़ै चुनमुनी जे विलुप्त भऽ रहल ओहि गाछे पर नहि बैसैये, तहन आइ कोयल के आवाज सुनै छी कि कोनो चिड़िया कि बगरा अबैया, जँ गाछे नहि रहतौ कतौ बैसतौ।
0: अपना सब जे आइए देखियौ काल्हि पानि बरसल तऽ बड़ नीक, आइ जे रोद भऽ गेल तऽ छाहरि दुआरे मोन एकदम सँ होइ छलै कतौ छाहरि भेट जाय,
1: रास्तामे तऽ गाछ रहैया तहने लोक बाट बटोही ठाम बैस कऽ सुस्ताय छथि। आ फल रहै छै तऽ आमक समय तऽ फलो खसैया तऽ खेबो करै छै,
0: तैं दुआरे बस एकटा ई तरीका छै अपना सबके वन महोत्सव सप्ताह मनेबा के जे गाछ वृक्ष के अपना सब संरक्षण करी। तऽ आप कार्यक्रम जे अछि घर आंगन ओहिमे सनेश सेहो लेबाक अछि आओर गपसप आओर बहुत रास अछि,
1: तऽ फेर करब मुदा पहिने सनेश भी लेले छी।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन, गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
3: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: तऽ सब श्रोता लोकनिके बहिन सबके स्वागत करै छी घर आंगन में। लाल बहिन कहने रहू अपना सब जे कि गपसप करब, चर्चा करब, एकरा संग संग मनोरंजन सेहो बड़ आवश्यक अछि।
1: तऽ मनोरंजन तऽ करबे करब, मुदा अखन जानै छियै अखन ब्याह दान के दिन छै आ अखन गर्मी सेहो देख रहल छियै, तऽ ब्याह दान मे जाउ निश्चित रूप सँ, लेकिन अपन स्वास्थ्य के रक्षा करैत, स्वास्थ्य पर ध्यान दैत, तहन ब्याह के आनंद लिअ। तऽ पहिने सुनबा दै छै अपन श्रोता लोकनिके एकटा ब्याह के गीत।

0: स्नेहा झा के गाउली विवाह गीत अपना सब सुन लो लाल बहिन आ आय एकटा और विशेष दिन सेहो अछि।
1: ठीक अहाँ कहलहुँ हँ तऽ आइ ने से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस अइ तऽ देखियौ अपना सब ओहिठाम तऽ ओहिना कहल जाइए डॉक्टर के अपना सब भगवान के उपाधि दै छियै ने जे जे जघन्य रोग सँ जे ग्रसित रहै छथि तऽ डॉक्टर हुनका बचबै छथिन तऽ हमरा सबके एहन विश्वास अइ।
0: एकदम
1: आइ के दिन डॉक्टर सबके हमसब याद करै छियै
0: एकदम अजुका दिन अपना सबहक स्वास्थ्य के नीक बनेबाक आ जीवन बचेबाक लेल जे डॉक्टर सबहक अथक प्रयास अछि समर्पण अछि आ हुनकर बलिदान के सम्मानित करबा के लेल ई समर्पित अछि
1: मनबै छी हमसब। ठीक है कहबे कैल डॉक्टर
0: 1 जुलाई को अपना सब
1: डॉक्टर
0: आ ई दिन जे अछि लाल बहिन से महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती आ पुण्यतिथि जे 1 जुलाई को
1: मनाओल जाइत अछि। तऽ देखियौ अपना सब गप केलहुँ आ कहबे केलहुँ हँ जहन सब जगहसँ हारि थाकि कऽ जाइ छी तऽ अपना सब जाइ छी डॉक्टरके पास
0: ओहिठाम बड़ उम्मीद आस लगा कऽ जाइ छी कि नीक भऽ जाय
1: चाहे बच्चा हुए वृद्ध हुए नहि हुए जे हुए कोनो आ डॉक्टर हमरा सबके बचा लै छथि।
0: आ जखन अपना सब स्वस्थ भऽ कऽ घरके घुरि कऽ आबै छी तऽ मोन एकदम रहैए डॉक्टरके प्रति आभार रहैए जेकि हमरा सबके ठीक कऽ देलथि
1: आ गुणगान करै छी आ दोसरोके किनको होइ छनि तऽ कहै छनि अहाँ ओहि डॉक्टर लगमे चलि जाउ हमरा ठीक भऽ गेलहुँ अहाँ ओतऽ जाउ ओतऽ जा कऽ करा लिअ नहि कहै छनि तऽ एकटा ई विश्वास अइ एहन हमरासबके जे आ देखियौ आइके दिन अपनासबके

0: अपन कार्यक्रम में एक प्रायोजित कार्यक्रम सेहो अछि तैयार है ना,
1: प्रायोजित कार्यक्रम सुनबाक बेर सेहो भऽ गेल अछि। तऽ सुनैत छी अपना सब प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस,
0: तऽ सुनी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं, राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, उनकी तरफ से। उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
4: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं।
3: हाँ।
4: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
3: है, जानकारियों का ही अभाव है।
4: हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
3: जी,
4: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
3: जी।
4: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
3: जी।
4: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
3: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
4: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
3: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
4: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है।
3: हाँ।
4: मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
3: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया आपसे।
4: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
3: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
4: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।

0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
0: सही।
1: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
0: सही बात।
1: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
0: सही बात है।
1: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हम हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है, कोई भी विषय हो जाए। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
0: बिल्कुल नहीं।
1: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
0: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233।

0: 3। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी,
1: फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
2: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
2: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
2: जी,
1: में
2: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
2: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
2: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
2: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
2: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
2: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
2: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
1: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
2: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
2: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
2: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी हाँ जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: हाँ हाँ, अपना सब सुने चलो, हाँ प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस आ मुनि बहन अहाँ के हाथ में एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है, से पहले अपन श्रोता लोकन के कह दियौन।
5: कार्यक्रम संबंधी सूचना ई है कि रेडियो के बात श्रोताओं के साथ, जी हाँ श्रोता लोकन, अहि कार्यक्रम के 12वां अंक रवि दिन यानी 5 जुलाई 2026 के दुपहरिया 2:30 पर प्रसारित हैत।

0: एहि कार्यक्रमके लेल अहाँ रेडियोसँ जुड़ल अपन अनुभव हमरा सभसँ साझा कऽ सकैत छी। रेडियो कखन अहाँके जीवनमे आयल, कखन अहाँ एक रेडियो श्रोता बनि गेलहुँ, जखन अहाँ रेडियो सुनैत छी तऽ केहन लागैत अछि, आ रिकॉर्ड करा सकैत छी अपन फोन कॉल्स शुक्र दिन यानि 3 जुलाई 2026 के दुपहरिया 3 बजेसँ 4:30 बजे के बीच। हमर सभक फोन नंबर लिख लिअ, 9430029353। एक बेर फेरसँ फोन नंबर कहि दै छी, 9430029353। तऽ मोन राखब 3 जुलाई के दुपहरिया 3 बजेसँ 4:30 बजे के बीच।
1: तऽ हमरसभके कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सम्पन्न भेल। आब हमरसभके कार्यक्रम घर आँगन समेटबाक सेहो बेर भऽ गेलै, एकरा समेटी आ कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारी। तऽ सभसँ पहिने तऽ किसान भाई लोकनिके कार्यक्रममे स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि,
0: एकदम स्वागत करै छियनि। किसान भाईके लेल तऽ जे बरखा बरसल यए, सभ एकदम भिड़ल छथिन,
1: अमृत समान बरखा अइ,
0: एकदम सही पानि लागल अछि खेतमे आ सभ खेतमे रोपनी कऽ रहल छथि।
1: जे किसान भाई लोकनिके बिचड़ा तैयार छनि ओ तऽ झट झट अपन रोपनीमे लागल छथि, आ जिनका नहि छलनि हँ बिचड़ा तैयार तऽ ओ अपन बिचड़ाके छिट मने बीया छिटने पछता भऽ जेतनि, मुदा हेतनि तऽ फेर दोसर बरखा हैत तऽ झटपट ओहो रोपि लेता नहि। आ देखियौ जुलाइ मासमे कोन कोन काजके प्राथमिकता देबाक चाही, कोन काज पहिने करबाक चाही, एहिपर किसान भाई लोकनिके विशेष रूपसँ एखन ध्यान रखबाक चाही।
0: एकदम ध्यान राखि कऽ समयसँ मौसमके हिसाबसँ अपन किसान भाई काज करै छथिन।
1: सभसँ पहिने तऽ कहबै केलहुँ हँ जे धानक काज छलै जे जिनकर खेत तैयार छनि ओ रोपै, आ ओहिके बाद आर जे बहुत रास काज अइ ताहि सभपर ध्यान देबाक चाही। जेना एखन अहाँके पपीताके गाछ रोपबाक सेहो एखन उचित बेर अइ बीया खसेबाक, जे एखन बीया खसा सकै पौधशालामे, आ जे एखन पौधा भऽ गेल छनि गाछ ओ खाधिमे सेहो रोपि सकै छथि।
0: आ जे धानक रोपनी जे छै एहि मासके अंत तक एकदम सम्पन्न किसान भाईके कऽ लेबाक छै। मकईके बाउगक जे 15-20 दिनक बाद जे छै निकौनी करी, मकईमे बाली निकलैसँ पहिले नेत्रजनसँ उपरिवेशन सेहो आवश्यक अछि।
1: आ शंकर बाजराके बाउग से जुलाईके 2nd आ 3rd सप्ताहमे कऽ लेबाक चाही। आ केसौर मिश्री कन जकरा अपना सभ कहै छियै ओकरा बाउग सेहो किसान भाई लोकनिके एहि मासमे से कऽ सकै छथि।
0: आ पिछला मासमे बाउग कयल गेल जे साग सब्जी अछि ओकर कमौनी निकौनी सेहो किसान भाई ध्यानसँ कऽ लेब। बरसाती प्याज लगेबाक सेहो समय अछि।
1: बरसाती तरकारी जेना लत्ती वाला तरकारी सभ भेल ओकरो लगेबाक पहिले, भाटा भेल, बरसातीके टमाटर भेल, ओहो सभ अहाँ लगा सकै, सजमनि भेल ई सभ अहाँ करैल इहो सभ लगा सकै छी।
0: आ खरीफ चारा फसलके बाउग सेहो किसान भाई सम्पन्न कऽ लेथिन। आ जे जून मासमे बाउग कयल गेल फसिलमे कमौनी निकौनी आ नेत्रजनसँ उपरिवेशन आवश्यक अछि। लाल बहिन, जे बरख भरिके चाराके रूपमे पारा घास नीचा वाला जमीनमे जतय पानिक जमाव होइत हुए आ शंकर नेपियर घास ऊंच जमीनमे किसान भाई लगा सकै छथिन,
1: ओकरो एखन बेर छै।
0: आमक साटा, लीची, लताम, नेबो के गुटी किसान भाई एखन तैयार कऽ सकै छथिन एहि जुलाई मासमे।
1: आ मकईके से कीट व्याध आ फफुंद आ धब्बासँ से एखन रक्षा करबाक चाही, मने ओकर निरीक्षण करैत रहबाक चाही किसान भाई लोकनिके प्रतिदिन जाकऽ। आ मिरचाइके बीयाके सेहो एखन खसेबाक उचित बेर अइ, पहिने ओकरा बीजोपचार कऽ लेबाक चाही तहन बीया खसेबाक।
0: बीजोपचारके तऽ कहल जाइ छै ने फसिलक टीका, तऽ जेना अपना सभ वैक्सीन लगाबै छी ने तहिना बीयाके लेल बीजोपचार बड़ आवश्यक अछि।
1: कोनो फसिल लगेबाक लेल मनी बहिन किसान भाई लोकनिके पहिने बीजोपचार करबाक चाही, तहने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ैया गाछके आ उत्पादन से नीक होइया, निरोग फल होइया या जे होइया तरकारी होइया अनाज होइया ओ सभ निरोग होइया।
0: आ माल जालके प्रमुख रोग सभ जे अछि एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर आ SH के रोकथामक लेल किसान भाई जँ अहाँ सभ जूनमे टीका नहि लगेने होय तऽ एहि मासमे अवश्य लगवा दियौ, बड़ आवश्यक अछि माल जालके स्वास्थ्य।
1: बरसात आबसँ पहिने से माल जालके टीका जे पशु पोषने छथि जे किसान भाई लोकनि ओहि माल जालके टीका निश्चित रूपसँ लगा देबाक चाही।
0: आ लाल बहिन, वानिकीके लेल वन रोपणके क्षेत्रमे

0: पौधा लगेबाक सेहो समय एहि मासमे अछि। ओहिना तऽ वन सप्ताह महोत्सव मना रहल छी अपना सब, एकरा संग संग 1 जुलाई का एकटा और विशेष दिन मना रहल छी, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस।
1: अच्छा, तहन तऽ फल ओना अपना सब किसान भाई लोकनि तऽ सब दिन फल तरकारी तीमन सब लगबै छथि, आ फल तऽ स्वास्थ्यो के लेल बड नीक चीज है। प्रतिदिन कहै छी ने समय आ फल के सेवन स्वस्थ रहबाक लेल।
0: अपना सब देखै छी लताम हुए, आम हुए, केरा हुए, ई तऽ बाड़ी झाड़ी में लगेबे टा करै छी, नेबो ई सब तऽ रहिते अछि, आ आन फसिलक खेती जे फल के खेती किसान भाई
1: जे करै छी
0: सेहो करै छथिन। आज देखियो सब कोइ अपना सब के विशेष कर लगाव होइत अछि, जे कि नै किस्ते कम से कम एकटा लतामो लगा ली। आ
1: देखते छी अपना सब के आंगन में कनियो माने बाड़ी में अगर जमीन है तऽ एकटा आम के गाछ आ एकटा लताम के गाछ अहाँ देखबै,
0: तऽ अपना सब ओ तऽ फल के एतेक महत्व अछि, ओहिना फलहारी करै छी आ पावनि तिहार में प्रसादी में आ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेहो देख लियो, बहुत आवश्यक अछि फल के। तऽ मनोरंजन सेहो बड़ आवश्यक अछि नीक स्वास्थ्य के लेल, एहिसँ मानसिक स्वास्थ्य नीक रहैत अछि।
1: खाली फल के गप केलहुँ, खाली फल खायब सैह नहि, मनोरंजन तऽ हेबे करते,
0: मुदा ओहिसँ पहिने
1: जे संदेश है ओ संदेश भी ले लै छी, फेर गीतनाथ सुनब।
0: बेस
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है, इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: तो किसान भाई के कार्यक्रम खेती गृहस्थी में सब गोटे के स्वागत करै छियनि। आ इसने से पहले गप केलौं जे कि गीत नाद सुनतो तो मोन एकदम हर्षित भ जायत, ओहिना किसान भाई सब धान के रोपनी कऽ कऽ मोन तो हर्षित छै ने।
1: आ धान के रोपनियो करैत रहै छथि, ओ सब गीतो नाद गबैत रहै छथि, अपनो गुनगुनाइत रहै छथि। सुनो किया तऽ देखियो गीत संगीत एहन छै ने जे अहाँके सब तनाव सँ मुक्त भ जाइए, अतबा काल एकदम लोक आनंद माने के अनुभूत होइ छै, या तऽ अपनो गाव गुनगुना या सुनै छी तखनो अनुभूत होइ छै। तऽ ई प्रसन्न रहबाक लेल से सबसँ कारगर दवाई
0: एकदम। तऽ चलू अपनो सब सुनै छी,
1: सुनाबै छी श्रोता लोकनिके, सुनाबै छी।

0: तो किसान भाई अखन ई बियाहक गीत विभा झा के स्वर में सुन लो, आप कनी मनोरंजन भौ गेल तो आप कनी काज दिस सेहो चले छी आप। आ किसान भाई के लेल जे कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना सेहो आई लऽ कऽ आबि गेल छथिन सविता कुमारी, तऽ वाचन आ संकलन छनि सविता कुमारी के, प्रस्तुति असत दाऊद के। तऽ सुनैत छी
1: आजुक कृषि गतिविधि लऽ कऽ हम उपस्थित छी लाल बहिन। किसान भाई लोकन के लिए नव नव जानकारीक संग स्नेह किसान भाई बहिन लोकन, आब कुसियारक पात सँ कार्बन के उत्पादन होयत जाहिसँ किसान भाई लोकन के आमदनी बढ़ि जेतनि। राज्य मे ईख के डांट के उपयोग चीनी इथेनॉल उत्पादन मे भऽ रहल अछि। आब एकर पात सँ किसान भाई बहिन लोकन के आमदनी जे बढ़तनि एहिसँ खेतक उपजा सेहो बढ़ाओल जायत। कुसियारक पात सँ बायो चार वा कार्बन तैयार करबाक काज शुरू कयल जायत। कार्बन के उर्वरक मे मिला कऽ माटिक उर्वरा शक्ति के बढ़ाओल जायत। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, एखन तक तऽ अहाँ लोकनि के कुसियार

सॅ चीनी गुड़ ओ रस के उत्पादन सॅ लाभ होइत छल, मुदा आब कुसियारक पात ओकर ऊपर के भाग के दाम सेहो भेट जायत जे पहिने नहि भेटैत छल। कारण कार्बन उत्पादन करय वाला इकाई आब किसान भाई लोकनि सॅ कुसियारक पात ओकर ऊपर के भाग डांट के सेहो कीन लेता, जाहि सॅ किसान भाई लोकनि के आमदनी दुगुना भऽ जेतनि। किसान भाई बहिन लोकनि, माटि मे कार्बन के मात्रा सॅ बुझबा मे आबैत अछि जे कतेक उपजाउ ई माटि अछि। माटि जांच के रिपोर्ट सॅ ई कहैत अछि जे खेत मे कार्बन के मात्रा कम भऽ रहल अछि। कतेक ठाम खेत मे तऽ ई से 3 सॅ 5% के बीच भऽ गेल अछि। एहिठाम के माटि मे कार्बन कम होयबाक सबसँ पैघ कारण अछि जे पराली जरेनाय, कटाव, ओ बेर बेर गहीर जोताई कयलासँ बेसी दिन धरि तक तापमान बेसी होयबाक कारणे सेहो माटिके कार्बन समाप्त भऽ जाइत अछि। कारण उपजाऊ

0: सोलह पाँच फीसदी के बीच भ गेल अछि। एहिठाम के माटि मे कार्बन कम होयबाक सबसँ पैघ कारण अछि जे पराली जरेनाय, कटाव, ओ बेर बेर गहीर जोताई कयलासँ बेसी दिन धरि तक तापमान बेसी होयबाक कारणे सेहो माटि के कार्बन समाप्त भ जाइत अछि। कारण उपजाउ खेत मे जैविक कार्बन के मात्रा 75% सँ बेसी होयबाक चाही आ 5-7% के बीच के मध्यम स्तर के माटि मानल जाइत अछि। 5 सँ कम कार्बन भेला पर माटि बंजर भ जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, बेनीपुर मे खरीफ महाअभियान शारदीय कार्यशाला सैन्य क किसान भवन मे आयोजित कयल गेल। कार्यशाला मे वैज्ञानिक लोकनि, ओ कृषि अधिकारी लोकनि किसान लोकनि के से रासायनिक उर्वरक ओ कीटनाशक के व्यवहार करबा सँ परहेज करे के सलाह देलखिन। ओ लोकनि कहलखिन जे बीज उपचार ओ बर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग कयला सँ खेत मे उपज बढ़त। ओ लोकनि कहलनि जे कार्यक्रम मे प्रत्येक पंचायत सँ कम 10 किसान के ओहि मे शामिल कयल जाय। सहायक निदेशक बीज उपचार के गुर सिखेलनि। ओ कहलनि कि कृषि विभाग प्रत्येक बर्मी पीठ निर्माण पर 5,000 रुपया के अनुदान भेटैत अछि। किसान लोकनि के खेत मे रासायनिक उर्वरक ओ कीटनाशक के उपयोग नहि के बराबर करबाक चाही, ई सलाह ओ देलनि। प्राकृतिक खेती मे गोबर ओ बर्मी खाद के व्यवहार कयला सँ उपज बेसी होइत अछि आ माटिक उर्वरा शक्ति सेहो बनल रहैत अछि। खरीफ किसान लोकनि के फसल क्षति के मुआवजा जल्दी भेट जेतनि। खरीफ 2024 मे फसल क्षति मुआवजा किसान भाई लोकनि के जल्दी भेट जेतनि। किसान लोकनि के आवेदन के जांच पूरा कऽ लेल गेल अछि। 1,45,000 किसान के फसल सहायता योजना के तहत 139 करोड़ के राशि भेटतनि। संभावना अछि जे अगला मास मे किसान के खाता मे DBT के माध्यम सँ फसल सहायता के राशि दऽ देल जेतनि। खरीफ 2024 मे 9,59,000 किसान आवेदन केने छलखिन। एहि मे 38 जिला के 2,70,000 सँ बेसी किसान के योजना के लेल पात्र मानल गेल छल। आइ बस एतबा, फिर अगला बुध दिन हम कृषि गतिविधि लऽ कऽ उपस्थित रहब।
1: किसान भाई, अखन अपना सब सुनैत छलहुँ हैं कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना वाचन आ संकलन सविता कुमारी के प्रस्तुति असद दाऊद के। तो लाल बहिन, एतेक नीक नीक जानकारी किसान भाई के भेटलनि, जरूर से ओ सब लाभान्वित हेता आ अही लाभक संग आब मनोरंजन दिस लाभ ले लेल चलै छी।

0: देखब ना सब ये गीत सुनै छी
1: कुंज बिहारी मिश्रक स्वर में सौंसे गाम बता लगैए आप देखियो सौंसे गाम तो अखन बड़ नीक लगैए क्योंकि काल्हि पानि बरसल ये एकदम से
0: आ किसान भाई लोग और निक लागतन किया तो खेती के काज खूब निक से चल रहा छन आ मौसम की कह रहा छन से झलक अपन किसान भाई लोग
1: एकदम एकदम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जो मौसम की जानकारी है अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकत आ हवा के गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलत आ सापेक्ष आर्द्रता 85% दुपहरिया में आ भिनसर में 91% के आसपास रह सकत
0: तो ई छल हमर सबके मौसम पूर्वानुमान आ मौसम के जानकारी जे किसान भाई लोग के रहे छन ओही हिसाब से अपन काज समेट लै छन कोनो मन में उहा पो नहीं होय छन आ नहीं बुझल रहे छन तहन मन में संशय रहे छन जे कोन काज करी कोन नहीं करी तो हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भ गेलै तो एकरा समेटी आ किसान भाई लोग से चलबाक आज्ञा लै छी नमस्कार मोनी बहिन
1: नमस्कार लाल बहिन।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाम घर एवं खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीवी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री कुमार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
3: विकसित भारत जी राम जी योजना आज से शुरुआत की जा रही है। इससे देश भर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। साल में 125 दिन काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम पंचायत को दी गई है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी विशेष जोर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीवी जी राम जी योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने जी रामजी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है।
4: विकसित भारत जी रामजी योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। समाचार कक्ष से निदेश श्री।
0: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
5: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी

0: नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
1: मंत्रिमंडल ने 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में खुलेंगे। कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 34,59,00,000 रूपये की लागत से गन्ना यांत्रिकीकरण योजना और 37,93,00,000 रूपये की लागत से ईख विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 29,56,00,000 रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार के 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई से 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा को मंजूरी दी। यात्रा के आयोजन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर 2,50,00,000 रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। अगर कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूं, कई समस्या सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से करें।
1: स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के एनएच और एसएच पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को शपथ दिलाई। भाजपा से भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने शपथ ली। वहीं जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। इसके अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में

0: बारिश की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बांका जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रजौन, कटोरिया और धोरैया थाना क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही 53 पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंकज कुमार तारात को विशेष निगरानी इकाई से हटाकर पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के राजपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्ना यादव को 8000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बगहा की एक अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में फरार चल रहे 40 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

Akashwani at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
1: जून माह समाप्त हो चुका है, जिले में मॉनसून अब तक नहीं पहुंचा है, इसके चलते खरीफ की खेती प्रभावित हो रही है। सामान्यतः 15 जून तक जिले में दस्तक देने वाला मॉनसून इस बार एक पखवारे से अधिक की देरी से चल रहा है। बारिश नहीं होने से जिले में धान की बुआई पिछड़ गई है। कृषि विभाग ने इस साल 90,124 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए करीब 9,000 हेक्टेयर में बिचड़ा तैयार किया जाना था, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक बिचड़ा आच्छादन नहीं हो सका है। किसान पंप सेट के सहारे खेत तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ रोशन कुमार के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो के कारण मॉनसून कमजोर पड़ा है, जिससे वर्षा में कमी आई है। उन्होंने किसानों को धान के साथ साथ मक्का, मड़ुआ और अन्य मोटे अनाज जैसी कम पानी वाली फसलों पर भी ध्यान देने की सलाह दी है। बिहार सरकार की अभिनव पहल के तहत प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के अवसर पर नवादा जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी ग्राम पंचायत रही, जिसके कारण ग्राम सभाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर महिलाओं ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सशक्तिकरण योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा किया और पंचायत स्तर पर उनकी भागीदारी को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। अकबरपुर प्रखंड की माखर पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत विकास दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रभावी मंच है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णय गांव के विकास की दिशा तय करते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय विद्यालय के लिए शोभिया स्थित चिन्हित 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया गया है। इसके बाद जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि विद्यालय की स्थापना संबंधी अन्य औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी हो सकेगी। इसके बाद नवादा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरा होने के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि

0: पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और हर घर जल जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाएं प्रभावी साबित हुई है। विवेक ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।
1: ये 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण का यात्रा, आज हम आगे बढ़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक रूपेण जो है हर पहलू को उठाते हैं।
0: नवादा जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत के लिए 9 व्यस्त रेलवे फाटकों पर रेल ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पथ निर्माण विभाग ने पिछले वर्ष रेलवे बोर्ड के अनुरोध पर सभी 9 प्रस्तावित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार DPR तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात।

0: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी नगमे। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म आईना का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर एवं जॉली मुखर्जी ने। समीर की रचना है और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।
1: एक बात बोलूं, आपने एक दिन कहा था कि जब मैं आपको एक दोस्त से कुछ ज्यादा समझने लगूं तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा दूं।

शब्बीर कुमार एवं अनुराधा पौंडवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी मेहरबानियां में। SH बिहारी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म चालबाज से। मोहम्मद अजीज एवं कविता कृष्णामूर्ति ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मोहम्मद अजीज़ एवं कविता कृष्णमूर्ति के गाए फिल्म चालबाज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हाँ श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 9430029353, 9430029353। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक, रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगें जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागत है साहित्य सौ सुसज्जित एक कार्यक्रम में चर्चा करे छे जो तो साहित्य सने साहित्यकारक विद्वान लेखकक ताई संगे महिला लेखिकक मैथिली साहित्य में महिला लेखिका लोकन बड़ महत्वपूर्ण योगदान देने छथि। हुनकर सभक रचना सँ अप्रतिम वैदुष्य आ पांडित्यक प्रकर्षक परिदर्शन होइत अछि। ई लोकन सर्जनात्मक साहित्यक संग संग आलोचनात्मक साहित्यक रचना में अपन काव्य प्रतिभा आ वैदुष्यक परिचय देने छथि।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागत है। साहित्य सौ सुसज्जित एक कार्यक्रम में चर्चा करी छे जो तो साहित्य सने साहित्यकारक विद्वान लेखकक ताई संगे महिला लेखिकक मैथिली साहित्य में महिला लेखिका लोकन बड महत्वपूर्ण योगदान देने छथि। हुनकर सभक रचना सँ अप्रतिम वैदुष्य आ पांडित्यक प्रकर्षक परिदर्शन होइत अछि। ई लोकन सर्जनात्मक साहित्यक संग संग आलोचनात्मक साहित्यक रचना में अपन काव्य प्रतिभा आ वैदुष्यक परिचय देने छथि। एतो धरि जे गद्य पद्यक विभिन्न विषय सँ संबंधित कतेको शोध सेहो लेखिका लोकन केलनि। कतेको लेखिका लोकन अपन लेखनी सँ जन्म कृतार्थ कऽ गेली। आई एहने सन एकटा लेखिका कवयित्री के जन्म भेल छलनि माँ जानकीक माटि में, जिनक नाम प्राचीन साहित्य में वैवस्वत मुनिक पुत्री आ पुरखाक माता रूप में वर्णित अछि। ईला रानी सिंह। संप्रति ईला पृथ्वी सन मानल गेली। स्याह ईला भारत भूमिक मिथिला क्षेत्रक कोसिका अंचल में प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंहक पुत्री रूप में जन्म लेलन औज के दिन 1 जुलाई 1945 के। ईला रानी सिंह चान जकाँ अल्पायु अर्धायु भेली, मात्र 50 बरख। पर्णकुटीक अंचल सँ सदा से जागृत उन्नत राज्य पश्चिम बंगालक कलकत्ता में पालित पोषित भेली। प्रारंभे सँ हुनका आधुनिक रूपे शिक्षा भेटलनि। ओ हिंदी आ मैथिली सँ एमए केलनि। तहिया कोनो स्त्रीक लेल एक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कऽ लेब बड पैघ उपलब्धि छल आ ओ तऽ 2 विषय में एमए के डिग्री प्राप्त केलनि। एतबे नहि, ओ बंगला आ अंग्रेजी भाषाक निष्णात ज्ञाता रहथि। पहिल मैथिली स्त्री भाषा वैज्ञानिक आ मैथिली पत्रिकाक प्रथम संपादक छली। लोक साहित्यक विशेषज्ञ सेहो छली। डीलिट हिंदी आ मैथिली दुनू विषय सँ केने छथि। मैथिली में शोधक विषय छल मैथिली लोकगीत में समाज चित्रण। यह शोध प्रबंध पर सन 1972 में डीलिट के उपाधि सँ विभूषित कयल गेली। एहि शोध में 14 अध्याय अछि। प्रत्येक अध्याय में विभिन्न पक्ष पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कयल गेल अछि। लोकगीतक इतिहास पासा, लोकगीत में धर्म आधार्मिक चेतना, सामाजिक संगठन, पारिवारिक गठन, स्त्री पुरुषक मनोवैज्ञानिक विकास परंपराक विश्लेषण कयल गेल अछि। तऽ आउ गीतक माध्यम सँ मिथिलाक वर्णन, माटिक वर्णन, जतय कतेको विदुषी जन्म लेलनि, सुनी ममता ठाकुर सँ।

0: सुनि रहल छलहुँ ई गीत ममता ठाकुरसँ। वास्तवमे संस्कार वर्णनक अन्तर्गत मिथिलाक सामाजिक स्थिति अवबोध होइत अछि। धार्मिक जीवन, पाबनि तिहार, वस्त्राभूषण, श्रृंगार प्रसाधनक समीक्षा इला रानी सिंहक शोध प्रबन्धमे भेल अछि। खाद्य सामग्री, आचार विचार, व्यवसाय अव्यवसायी, आर्थिक आ राजनीतिक जीवन, धर्म, नीति और दर्शन, मनोरंजक साधन जेहन प्रत्येक पक्षक सांगोपांग विवेचन विश्लेषण 14 अध्याय में ओ केलन। मैथिली लोकगीतक मनन मंथन को समाजक प्रत्येक पक्ष के वैज्ञानिक दृष्टि सँ समुपस्थित कयल गेलन। अभिव्यक्ति लेल औनाइत इला रानी के बाल्यावस्थाए सँ लेखनक प्रति अभिरुचि रहन। 1960 ईस्वी में मात्र 15 वर्षक व्यास में हुनक 3 रचना प्रकाशित उपलब्ध होइत अछि। सप्ता बिपताक कथा, मिथिलाक छात्रा लोकनिसँ आ कुपुरुषक खोज। हुनक कविता सब पर ध्यान दी तब बुझना जाइत अछि जे हुनक लेखकीय दृष्टिकोण अति व्यापक, गंभीर संगई कोमल राग भाव बंध सँ आवेष्टित रहन। सामाजिक सरोकार रहेक मिथिला आ भारतवर्षक प्रति अनुभूति आ तकर अभिव्यक्ति मानव जीवनक अनिवार्य तत्व धर्म थिक आ यह श्रेयस्कर अभीष्ट। 1960 ईस्वी सँ इला रानी सिंहक रचना विविध विधा में जेना कविता, कथा, निबंध, समीक्षा, अनुवाद मैथिली में निरंतर प्रकाशित हुआ लागल। विभिन्न प्रकाशन सँ हिनक मैथिली अनुवाद के जो गप करी तो ऑस्कर वाइल्डक फ्रेंच नाटक सलोमा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायक उपन्यास विश्व वृक्ष, प्रेम एक कविता जे प्रवीर मुखोपाध्यायक एकांकी अछि, संगहि सुनील कुमार चट्टोपाध्याय लिखित विभूति भूषण मुखोपाध्यायक बांग्ला जीवनी के अनुवाद मैथिली में बड उत्कृष्टताक संग केलन। इतवे ने मैथिली सँ बंगला में अनुवाद सेहो इला रानी सिंह केलन। राजकमल चौधरीक कथा साँझक गाछ के साझेर गाछ नाम सँ बंगला अनुवाद केलन। हुनक रचना कविता संग्रह पर आगा और चर्चा करब, ताधरि सुने छी काव्य पाठ रानी झा सँ।
1: शीर्षक अछि बेटी। एक घर सँ दोसर घर जाइत अछि बेटी, जेना हो कोनो छोट छीन तुलसीक पोछ। एक ठाम सँ उखाड़ल जाइत अछि, दोसर ठाम रोपल जाइत अछि। जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश, जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश, जे लऽ जाइत अछि ओ अपना संग। जँ जोरगर छै ओकर कपार, निश्चय भेटतै ओकरा विस्तार, दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिल पबैत अछि आकार। दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिल पबैत अछि आकार, होइ छै ओकर चारू भर पसार। स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग, स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग, एक लोटा अछिंजल आ साँझक दीप, सनै सनै ओ भऽ जाइत अछि झमटगर, हरियर, गदरायल आ रमनगर। मुदा एहनो होइ छै कोनो कोनो तुलसी माने बेटी जाइत अछि उत्साहक संग, मुदा भेटैत अछि ओकरा मात्र एकटा कोन। अपन जड़िक माटिक अंशक संग ओ करैत संघर्ष, तरस जाइछ एक चुरुक जल लेल अपना विस्तारक हेतुए, जगह लेल हवाक सिहकी आ रौदक कनियोटा टुकड़ी लेल।

0: लेल संघर्ष करैत करैत तोड़ि दैत अछि अपन सांस, मौला जाइत अछि तुलसी। संघर्ष करैत करैत तोड़ि दैत अछि अपन सांस, मौला जाइत अछि तुलसी। तैं तो तुलसी कतौ रहै छ झमटगर आ कतौ पील पिलायल।
1: सुनि रहल छलहुँ काव्यपाठ बेटी रानी झाँसँ, जे मोनके भावुक कऽ देलनि। आइ विशेष रूपसँ स्मरण कऽ रहल छी विलक्षण प्रतिभाक धनी मिथिलाक एकटा बेटी ईला रानी सिंहक, जे काव्य धाराक क्षेत्रमे कोमल, करुण, संवेदनशील आ यथार्थ संघर्षक गहन भावक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति देलनि अछि। मात्र 27 वर्षक अवस्थामे हुनक विन्दंती सदृश प्रौढ़ कविता संग्रह 1972 प्रकाशित भेल रहनि। विन्दंतीक कथ्य सब देखब तऽ आश्चर्य लागत, प्रभावित भेने बिना नहि रहि सकब। जे चान सन गीत लताक पर्याय जनिक नाम, ओ एहन एहन प्रज्वलित बिंदु सबके अपन रचनाक आधार बनौलन, निस्सन कविता लिखलन, मिथिलाक मसृण माटि पर जन्म भेलन अवश्य, मुदा हुनक शिक्षा दीक्षा बनारस, कलकत्ता, सागर आ उज्जैन सदृश अति जागृत चेतना संपन्न धरती पर भेलन। स्वभावतः हुनक रचनामे सामाजिक सरोकार, सामाजिक मूल्यक प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक सूझबूझ आ जन सामान्यक पीराक प्रति परिपक्व अनुभूति रहनि। सामान्य जनक प्रति हुनक अंतर्मन अभिव्यक्त भेल। ईर्ष्या, द्वेष, ओ घमंड उचरिंग खदखद करैछ हमर मोनक गहन अंतराल में, मुसरी मारक औषधि जका उचरिंग भारक औषधि भेटैछ कि नहि तकर हमरा जिज्ञासा नहि, किएक तऽ आजुक युगमे श्रमिकसँ नेता धरि ओकरे तँ पोसि रहल छथि। ईलाजीक कलम स्वतंत्रतासँ पूर्वक मैथिल समाजमे स्त्री शिक्षा, व्यक्तित्वक अस्तित्व, अस्मिताक प्रति उदासीन नकारात्मक मानसिकता देखेलथि। हुनक कविता नवचेतनावादी स्वरक प्रखरतासँ दीप्त छनि। अनुभूतिक तीव्रता आ अभिव्यक्तिक मंजुलताक कारणे कविता सबमे रस परिवेशनक क्षमता छनि। पौराणिक, आध्यात्मिक गाथा के ईला रानी सिंह समकालीन संवेदनशील कविता बना दैत छली। हुनक कलम मात्र 50 वर्षक व्यासमे रुकि गेलन आ मैथिली साहित्य एकटा अमूल्य रत्नसँ हीन भऽ गेल, मुदा हुनक रचनामे आइयो ओतबे प्राण बसल अछि। हुनका शत शत नमन।

सुन रहल छलहुँ विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में ई गीत। आब सुनै छी किछु शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि बिलौकी। उपनयनक चारिम दिन रातिम होइत अछि, रातिम कहलो जाइत अछि। ओहि राति बरुआसँ गामक टोल पड़ोसँ भिक्षाटन कराओल जाइत अछि। सह भेल मिथिलाक बिलौकी। एकटा शब्द अछि जट जटिनक गीत। बरखाक अभावमे पहिने किछु महिला लोकनि द्वारा नाचि नाचि गीत गाओल जाइत छल समूहमे। उत्तर प्रत्युत्तर गीते द्वारा होइत छल। इएह भेल जट जटिनक गीत। एकटा शब्द अछि डहकन। समधि वा जमाके भोजन करेबा काल जे हास परिहासमे गीत गाओल जाइत छल सएह भेल मिथिलाक डहकन। बटगबनी। एकटा एहन गीत जे बाट घाट चलैत गाओल जाइत अछि। परिछन। बरख परिछन मिथिलाक महिला वृन्द द्वारा द्वारि पर नाना प्रकारसँ विध विधानक सङ्ग हास परिहासक सङ्ग कयल जाइत अछि। ई मिथिलाक वैवाहिक विधमे सँ एकटा प्रमुख विध मानल जाइत अछि। कार्यक्रम के अंत में सुनै छी एकटा ई गीत।

सिंगरहर। अभी आप सुन रहे थे मैथिली में हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में

0: एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप

0: में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की

0: संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on

0: मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजा किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298.80 रुपये यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपये यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है, ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखिला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी, ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन PP चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निजाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन लॉ

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो

0: इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए, क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
3: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है, इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है। और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जांपल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ी मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम

0: लास्ट माइल तक पहुंच सके और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो, तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म।

0: हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है, इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द डिपो इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी सुन जी ने बात किया कि एआई कोर्सा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूज दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माइगॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए, इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को

0: मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: कर रहे हैं हम
3: जी। और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
0: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग

0: छह हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी ये नेक्स्ट फ्रंटियर है मतलब, और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये ना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए, अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए, हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है, अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारे सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी

0: ऐसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इंप्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्पल जी माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हो स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है बिकॉज मैं क्या देखता हूँ इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं चर्चा का विषय में आज बस इतना ही, हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर जिसमें चर्चा की गई AI सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी।

श्रोताओं नमस्कार। लोकगीतों के इस विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सबों का मैं आरती स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोक परंपराओं पर आधारित लोकगीतों को सुनते हैं। अवसर चाहे कोई भी हो, लोकगीतों का बजना स्वाभाविक ही है। कभी कभी कुछ कलाकारों द्वारा जीवंत गायन किया जाता है तो कभी कभी हम उन गीतों को कैसेट के रूप में भी सुनते हैं। खासकर जब लगन का समय आता है तो लोकगीतों का चलन बढ़ जाता है। घर में कोई शुभ अवसर हो

तो सखी सहेलियां लोकगीतों का आनंद लेने से नहीं चुकती है और देवी गीत, नचारी, महेशवाणी, विवाह गीत, उपलैन, सोहर बधैया गीत, मुंडन और अन्य विधाओं के गीत सहज ही उनके मुख से निकल पड़ता है। आजकल लगन का समय है और चारों ओर कहीं न कहीं से हमें लोकगीतों की लहरें सुनाई देती ही रहती है। जब भी लोकगीतों की शुरुआत होती है तो सबसे पहले देवी गीत गाया जाता है। जी हाँ, देवी देवताओं को मनाने के लिए देवी गीत गाया जाता है, या फिर कहे कि उनका आशीर्वाद पाने और उनसे वरदान पाने के लिए देवी गीत या महेशवाणी या फिर अन्य देवी देवताओं के गीत सभी शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा देवी गीत।

भारतीय संस्कृति में लोकगीतों का अपना एक महत्व है, और जब बात नए मेहमान के आगमन की हो तो सोहर की मधुर धुनों के बिना उत्सव अधूरा लगता है। सोहर मुख्य रूप से मिथिला और उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित एक ऐसा पारंपरिक लोकगीत है जो बच्चे के जन्म की खुशी को जाहिर करने के लिए गाया जाता है। ये केवल एक गीत नहीं है, बल्कि हमारे परिवार और समाज की सामूहिक खुशियों और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही घर में सोहर की गूंज सुनाई देने लगती है, खासकर जन्म के छठे दिन, जिसे छठी कहा जाता है। इस अवसर पर महिलाएं इकट्ठा होती है, ढोलक की थाप और मंजरे की खनक के साथ महिलाएं ऊंचे स्वर में सोहर बधैया गीत गाती हैं, तो पूरा वातावरण मांगलिक और हर्षोल्लास से भर जाता है। इन गीतों की पंक्तियों में नवजात के लिए अपार स्नेह, खुशी और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं छिपी होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि सोहर की जड़ें भारतीय इतिहास में बहुत ही गहरी है। ऐसा मानना है कि वैदिक काल से ही संतान जन्म जैसे शुभ अवसरों पर मंगल गीत गाने की परंपरा चली आ रही है।

श्रोताओं, बात अगर हम मिथिला के लोकगीतों की करें तो यहाँ के लोक जीवन में हर पर्व त्योहार में, हर उत्सव उमंग में, विभिन्न मौसम में ये लोकगीत गाए जाते हैं। मिथिला में हर तरह के लोकगीत भरे पड़े हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर विवाह और अंतिम विदाई तक, इतना ही नहीं, संस्कार गीत और लोक पर्व त्योहार से लेकर विभिन्न मौसम पर उभरने वाली भावनाओं के लोकगीत, ये सारे गीतों के यहाँ भंडार है जो अपने समय और अवसर के अनुसार गाए जाते हैं। इस तरह की मिथिला में लोकगीतों के गाने के लिए न अवसर की कमी है, न अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

जब कोई शुभ अवसर आता है तो लोक गीतों की बात हम करते हैं, देवी देवताओं के गीत हम गाते हैं। ऐसे में देवाधिदेव महादेव को भी मनाने और उनसे वरदान पाने के लिए हम कभी नचारी तो कभी महेशवाणी, कभी विद्यापति गीतों को गाते हैं तो कभी कोई अन्य गीत गाते हैं, ताकि महादेव हमसे प्रसन्न हो सके और हमें अपना आशीर्वाद और वरदान दे सके।

अभी आपने जिन कलाकारों को सुना वे हैं अरविंद कुमार झा, ममता ठाकुर, विभा सिन्हा और शारदा सिन्हा। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी आपको कैसा लगा? आप हमें अपना सुझाव एक पत्र के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 846004। तो अब लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी से मितेश कुमार मिश्रा के साथ आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

लोक माधुरी। अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक विशेष सूचना आपको दे दें। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें 9430029353, 9430029353। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों के रंग और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पवन। आज के इस संगीतमय सफर में हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां मंजिल से ज्यादा मायने रखती है मंजिल तक पहुंचाने वाले मांझी, जहां बहती हुई नदियां अपने साथ लाती है यादों की लहरें और किनारे पर ठहरती हैं कुछ सुरमयी धुनें। तो आइए इस संगीत की धारा में हम भी डुबकी लगाएं उन गीतों के साथ जिनमें बहता है प्यार का जल, जिंदगी का किनारा और दिल की मांझी। यहां शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो बताता है कि जिंदगी भी किसी बहती नदी की तरह है।

मन्ना डे साहब की मखमली आवाज, इंदिवर की रचना और कल्याण जी आनंद जी का अमर संगीत। श्रोताओं, ये जो हमारी जिंदगी है वह बड़ा ही अजीब और अचरजों से भरा है, बिल्कुल नदी की तरह, कभी सुकून देती है, कभी बहा के ले जाती है। हर दिल किसी किनारे की तलाश में है जहां ठहर सके, सुकून पा सके। फिल्म खुशबू का ये गीत उस तलाश की आवाज है जहां मांझी अपनी मंजिल से नहीं बल्कि उस धारा से बात करती है जो उसे दूर ले

जा रही है। गुलजार साहब के शब्दों में और आरडी बर्मन की धुन में लिपटा ये गीत हर उस दिल के लिए है जो किसी किनारे की उम्मीद रखता है, भले ही धारा कितनी भी तेज क्यों न हो।

दोस्तों, जिंदगी की डगमग नाव को किनारा तब मिलता है जब मन में उम्मीद की पतवार और दिल में विश्वास की लहरें उठती हैं। ऐसे ही किसी सफर की कहानी कहता है अगला गीत, जहां सागर की लहरें हैं, मल्लाह की पुकार है और मोहब्बत का इकरार है। फिल्म आया सावन झूमके का ये प्यारा नगमा, जहां मोहम्मद रफ़ी साहब की सुरीली आवाज में है जीवन का दर्शन, आनंद बख्शी के शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत जो हर धड़कन की को लय देता है। तो आइए सुनते हैं वो गीत जो हमें याद दिलाता है कि हर तूफान के बाद एक सुकून भरा किनारा भी होता है।

श्रोताओं, ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था सौदागर से, और इस गीत के गायक कलाकार थे मन्ना डे और बोल राजा मेहदी अली खान के थे और संगीत रवि का था। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म आया सावन झूमके से, सुनते हैं।

कभी सोचा है दोस्तों, नदी का जल जब ताल से मिलता है तो एक नई धुन, एक नया संगम बनता है। यही तो जिंदगी का सच भी है। हर रिश्ता, हर मिलन किसी न किसी सुर में ढलकर संगीत बन जाता है। फिल्म अनोखी रात का यह अमर गीत मानो जीवन की उस अनोखी लय को बयां करता है जहां हर मिलन का एक अर्थ है और हर बिछड़न में भी एक मिठास छिपी है। प्रिय श्रोताओं, इस गीत के मधुर बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत की अद्भुत रचना की है रोशन ने और इसे अपने मधुर आवाज से सजाया है मुकेश ने। तो सुनते हैं।

प्रिय श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों और यादगार गीतों के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। गीतों के रंग आज के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। फिर मिलेंगे ऐसे ही सुरीले नगमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत

0: मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific.